0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आस्था से। नमस्कार।
3: नमस्कार। 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठेंगे। नई मुद्रा छपाई, 83 बिलियन रुपए का विवाद और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जवाब देंगी। संविधान में बदलाव की दिशा में आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मॉरिशस के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की। इस साल अब तक 3,478 मामले दर्ज हैं। मॉरिशस अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के टिकाऊ मॉडल पर काम कर रही है ताकि अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और यूरोप के कुछ देशों से मरीजों को आकर्षित किया जा सके। और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को टाल दिया है। उनका कहना है कि गल्फ देशों के अनुरोध पर तेहरान के साथ गंभीर बातचीत जारी है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा। आज सुबह और दोपहर बाद भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को केवल पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर कुछ बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय 6:32 पर, सूर्यास्त 5:40 पर होगा।
5: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
6: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
7: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

हज एक ऐसी इबादत है जिसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में इसकी अहमियत को उजागर किया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने सैकड़ों अहादीस में इसकी फजीलत और हज के इनामात का तज़किरा किया है। रब ताला का फरमान है, यकीनन वो मकान जो सबसे पहले लोगों की इबादत के वास्ते मुकर्रर किया गया वो मकान है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, बरकत वाला मकान है और तमाम लोगों के लिए हिदायत की चीज़ है। अल्लाह ताला हर बंदे मोमिन को काबे का दीदार नसीब फरमाए।

0: करना 10 दिनों तक यानी ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों के लिए हस्ब मामूल इसी वक्त इसी चैनल पर हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकातुमालिया की ज़बानी ख़ास बयान आप समाअत कर सकेंगे। सिलसिले की पहली कड़ी आज से शुरू हो रहा है। पेश खिदमत है ये पहला बयान अज मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकातुमालिया।
1: नहमदुल्लाह ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हमदो सना के बाद मोहतरम सामईन माह जुल हज के दुरूस के सिलसिले में ये पहला दर्स है। अल्लाह जल्ल मजहू ने इस मुबारक महीने की पहली फज्र की कसम उठाई और इसकी पहली 10 रातों की कसम उठाई। इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के पहले 10 दिनों की अहमियत को उजागर फरमाया। सो सूरे फजर में इरशाद बारी ताला है, वल फजर कसम है फजर की, वलयालिन अश्र और 10 रातों की, वशफ़ वल वत्र और जोड़े की और ताक की, वल्लैल इज़ा यस्र और रात की जब वो गुज़र चले, हल फ़ी ज़ालिक क़समुन लिज़ी हिज्र, क्या अक़लमंद के लिए इनमें से कोई कसम काफ़ी है कि वो ये यकीन कर ले कि क़यामत ज़रूर आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, عن ابن عباس

0: जिसको अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक ही के वक्त से मुहतरम बनाया। इसी महीने में हज जैसा अहम फरीज़ा अदा किया जाता है और पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह की राह में अपने जानवरों को कुर्बान किया जाता है। यही वजह है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने इन 10 दिनों के आमाल को और नेकियों को ज़्यादा अहमियत दी, उसमें नेकी के सवाब को बढ़ा दिया। अल्लाह पाक हमें इस माह में खूब खूब इबादत की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस इसके पहले अशरे में। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: सामीन, अभी आप ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों के मुबारक मौके पर जमा मस्जिद के खतीब आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ाज़ी रज़वी दामत बरकतुल्लाह की ज़बानी बयान समाप्त कर रहे थे। इंशाल्लाह हम आपको बता दें कि इसी वक्त इसी चैनल पर रोज़ाना ईद उल अज़हा तक हज़रत क़िबला का बयान आप समाप्त कर सकेंगे। आइए हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं।

सामीन, वो लम्हा वो पल कैसा होगा जब पहली नज़र बैतुल्लाह काबा शरीफ पर पड़ती होगी। काबा शरीफ अपनी शान शौकत, अजमत, तजल्लियात और अनवार की बारिश करता हुआ सियाह गिलाफ में मलबूस जब नज़र आए तो जज्बात और कैफियात क्या होते होंगे उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि काबे पर पहली नज़र, पहली निगाह पड़ते वक्त जो दुआ की जाती है वो शर्फ़ कबूलियत पाती है।

जहां मदफून है वो जगह ऐसी है जहां से शेख साथी शिराजी अली रामा को भी जलवे यार यानी महबूब रसूल महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह ज़ैबा की ज़ियारत उन्हें नसीब हुई और कई बुजुर्गाने की एक साथ तशरीफ ले गए अल्लाह के बरगुजीदा बंदे। पांच रोज से मदीने मुनव्वरा में कयाम था, गैरत थी, किसी के सामने उन्होंने दस्ते सवाल दराज नहीं किया, लेकिन भूखे थे। एक रात सुतून हन्नाना के करीब टेक लगाकर वो लेते थे और उन्होंने उसी आलम के अंदर जब उनकी आंख लगती है तो अपने आका की बारगाह के नहीं सोने से पहले आंख लगने से पहले वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौर बार की तरफ देख रहे हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, पांच दिन से आया हूं, भूख शिद्दत से लगी है, गैरत का तकाजा यह है कि किसी से न मांगो, आपके दर पर आकर किसी से सवाल करना यह दर की तौहीन है, इसलिए मैं खामोश हूं और सब कुछ मैंने आपके हवाले कर दिया। ये कहते कहते आंख लग जाती है, ख्वाब में रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है और आका अपने दस्ते करम से उन्हें रोटी अता फरमाती। रौदुर रियाहीन में अल्लामा याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब वो रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खा चुके होते हैं और आंख जब खुलती है तो उनकी उनके हाथों के अंदर आधी रोटी दूसरी मौजूद होती। तो कौन सा सवाल है जो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौर बार से पूरा नहीं होता। एक सरकार की आल में से आले रसूल थे, पहुंचे मदीने मुनव्वरा। अब पहुंचने के बाद तड़प पैदा हुई, आदमी का शौक होता है ना कुछ खाने का शौक होता है, जब आदमी का शौक होता है तो वो सोचता है कि ये चीज मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो वो आले रसूल थे और उनको नाज करना अपने नाना के दरबार के अंदर हक था, तो उन्होंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सफर के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबलाए मौला के अंदर जो जंग वाकई हुई थी उसके बाद जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ मदीने मुनव्वरा जब लौटे थे और जिस मकान में आपने कयाम फरमाया था वो मकान आज भी मौजूद है जिसे दारुल हुज्न कहा जाता है और उसे आज भी पुरानी पोजीशन के अंदर उन्होंने रखा है, ऐसे ही मौजूद है। तो अब वो आले रसूल थे, उन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया नाना जान बड़ा शौक है मुझे घी के साथ बनाए हुए हलवे के खाने का, बड़ी तड़प है सरकार, लेकिन अब मैं मांगू तो किससे मांगू, मुझे कोई जानता भी नहीं कि मैं किसी से फरमाइश कर सकूं। बस ये उन्होंने मारूजा पेश किया, सो गए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के एक बाशिंदे को हुक्म दिया कि मेरी आल में से एक मौजूद है और उसे ये खाने का शौक है, जाओ उनकी खिदमत में जाकर ये चीज बना करके पेश करो, उनको खिला दोगे रब तुम्हें बरकतों से माला माल फरमा दे। और आंख जैसे ही खुली तो वो सारी चीजें लेकर हाजिर। उन्होंने कहा भाई मैंने आपसे तो नहीं मांगा था, या आपको कैसे पता चला मुझे ये खाना है? कहा जिससे मांगा था उन्हीं के हुक्म पर लेकर हाजिर हो। यह है दरबारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे याद है आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैह रहमत व रिदवा बड़े जबरदस्त आशिक रसूल गुजरे। जब मदीने मुनव्वरा में हजरत दुआएं देने के लिए कयामगाह पर तशरीफ लाए थे और जब हजरत को छोड़ने के लिए हम नीचे उतरे और गाड़ी में जब हजरत को बिठा रहे थे उस मौके पर हजरत के रुखे अनवर को देखकर एक बंदे के दिल में तड़प पैदा हुई कि हजरत से वो दुआ कराए, तो वो हाजिर होकर हजरत से अर्ज करता है कि हुजूर मेरे लिए कुछ दुआ फरमाए। तो हजरत ने फरमाया क्या दुआ करूं, जुमला जहन में रखिएगा आप। उन्होंने पूछा क्या दुआ करूं, तो उस शख्स ने कहा हजरत दुआ फरमाए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। क्या? अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। कुर्बान जाइए उनके जुमले पर, इरशाद फरमाते हैं बेटा मक्का मुकर्रमा में बंदा खुदा की रहमत को तलाश करता है और मदीने में हुजूर की रहमत गुनहगारों को तलाश करती है। बेटा यहां तो गुनहगारों को सरकार की रहमत ढूंढ रही होती है, यहां आए हो इंशाअल्लाह सरकार की तरफ से बख्शिश का मुजदा इजाफा मिल जाएगा, बख्शिश का मुजदा इजाफा मिल जाएगा। और फिर आगे गिरह लगाते हुए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो अब सरकार ने बुला लिया,

और शफात का मुजदा भी दे दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि मदीने जाकर भी सुधर करके नहीं आया। इस अता की लाज भी रख लेना। क्या करना? इस अता की लाज भी रख लेना कि इतने बड़े दरबार में तुम्हें बुलाया गया, मेहमान बनाया गया, तो अब ऐसे बन करके लौटना कि दुनिया पुकार उठे कि आका ने इसको नवाज दिया है, आका ने इसको नवाज दिया है। उस गार की जियारत का इत्तेफाक, उस गार के दीदार का इत्तेफाक नसीब, उस गार के दीदार का शर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस गार को गारे सजदा कहते हैं, आपने अक्सर तकरीरों के अंदर सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में 3 रोज तक मदीने के लोगों से ताल्लुक बिल्कुल तोड़कर उस गार में तशरीफ ले गए थे और 3 रोज तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश की सरकार ने दुआ फरमाई। नीचे से तो ज्यारत सब करते हैं, इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और गार तक पहुंचने का शर्फ हासिल हुआ। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो भी राय के दाने के बराबर भी सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखता होगा, तो उस गार को देखने के बाद यकीनन आप दीदा भी हो जाएगा और उसका विज्ञान कहेगा कि हम कितने निकम्मे हैं, कितने नाकारा हैं कि उस रसूल की नाफरमानी करते हैं जो इतनी पहाड़ी पर चढ़कर अपनी उम्मत की नजात के लिए 3-3 दिन तक खाना पानी सब छोड़कर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहे, अल्लाह की बारगाह के अंदर उम्मत की बख्शिश की दुआ करते रहे। आप गार का मंजर देखेंगे तो खुद ब खुद आपके दिल की कैफियत जुदा हो जाएगी। रास्ते में कांटे, कांच, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इश्क सच्चा हो तो सारी मंजिलें आसान हो जाती है। और यकीन जानिए कि उस गार को देखने के बाद जो चीज जहन में आई है उसे भी आप समझो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल बनकर तो नहीं आए, सबके रसूल बनकर के आए ना। आका पत्थर के भी रसूल हैं, आका शजर के भी रसूल हैं, हजर के भी रसूल हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के भी रसूल हैं और रसूलों के भी रसूल हैं, सबके रसूल हैं। जमीन के रसूल, आसमान के रसूल, चांद के रसूल, सूरज के रसूल। और हर मखलूक की जिम्मेदारी क्या है? और हर मखलूक के लिए जब आका रसूल बनकर के आए तो क्यों रब ने भेजा? तो कुरान कहते हैं वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने रसूलों को नहीं भेजा मगर अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमा बरदारी की जाए। तो सरकार सबके रसूल बनकर के आए, और जब सबके रसूल बनकर के आए तभी तो सब रसूल की इताअत कर रहे हैं। दरख्त को आका हुक्म फरमाते हैं तो जड़ों से झूमता हुआ सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाता है। पत्थरों को हुक्म दे रहे हैं तो पत्थर भी आका की बात मानते नजर आते। चांद को इशारा फरमा रहे हैं तो चांद भी बात मानता नजर आता है। सूरज को इशारा फरमा रहे हैं तो सूरज भी बात मानता नजर आता है। पानी को इशारा फरमा रहे हैं तो पानी भी हुक्म की इताअत करता नजर आता है। वो कौन सी शय है जो मेरे आका की इताअत न करती हो? और मैं आपसे पूछता हूं, सारी मखलूक के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम, लेकिन मुझे बताओ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मखलूक में से किसी के लिए इतनी गिरियोजारी की है, रोए हैं या गारों में जा जाकर दुआएं की हैं जितनी सरकार ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई होगी? सरकार ने पत्थर के लिए दुआ नहीं फरमाई, दरख के लिए दुआ नहीं फरमाई, उसके लिए नहीं रोया आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ नहीं फरमाई। दुआ तो सबके लिए फरमाई है, लेकिन उसके लिए इतना नहीं रोए जितना अपनी उम्मत के लिए सरकार रोए। कितने ताज्जुब की बात है, जिसके लिए आका इतना नहीं रोए वो तो हुजूर की इताअत कर रहे हो, और जिसके लिए आका सब कुछ छोड़कर के गारों में सजदों के अंदर पड़े हो, आज उस उम्मत का हाल यह है कि अपने आका की नाफरमानी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ती। और यही वजह है कि आज हम जलील भी हैं, रुसवा भी हैं, परेशान भी हैं और गमगीन भी हैं। गारे सजदा ये आज पुरानी हैसियत और पुरानी पोजीशन के अंदर मौजूद है। और बनू नुदैर ये यहूदियों का एक कबीला था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम पेश किए, उन्होंने दावत इस्लाम कबूल नहीं की। ये भी मदीने मुनव्वरा में मौजूद था कबीला। और फिर उनको

0: सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालिहत और मुआहदे के बारे में कहा तो वो भी उन्होंने कबूल नहीं किया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी शरीफ पर सरकार सवार हुए और जलाल के आलम में ऊंटनी को तेज रफ्तार सरकार ने दौड़ाना शुरू किया। आप जानते हैं जिस ऊंटनी पर सरकार सवार थे वो ऊंटनी जब चलती थी तो सरकार के जलाल नबुव्वत की वजह से ऊंटनी के कदम जहां पड़ते थे वहां निशान हो जाता था। तो बहुत सारे निशानात तो उस ऊंटनी के कदमों के खत्म हो चुके हैं। एक साहब के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बाग में उस ऊंटनी के दो कदमों के एक पत्थर पर निशान है, उन निशानों को देखने का मौका भी मयस्सर हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको क्या बताऊं, मदीने की बहारें, मदीने की कैफियात, मदीने की तरफ से जो बरकतें अल्लाह अज़्ज़वजल उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हैं, अपनी मिसाल आप है। अल्लाह अज़्ज़वजल बार बार बार बार अदब के साथ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पाक की हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए।
1: शहर मदीना, इस उन्वान पर आप मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी की जबानी दूसरा और आखिरी हिस्सा समाप्त कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शहर मदीना का अदब व एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

सामीन, दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अकायद जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करके इत्तेहाद के साथ दुनिया के मुसलमान चौक दर चौक एक मरकज़ की तरफ निकल पड़ते हैं, एक जैसे लिबास में, एक जैसी आवाज़ बुलंद करते हैं, अल्लाह ताला के घर के गिर्द सात चक्कर लगाते हैं, रोते गिड़गिड़ाते अपने रब से दुआएँ मांगते, हजर अस्वद को बोसा देने की बेचैनी, नहायत मशक्क़त करते हुए एक ही लगन में मगन हुज्जाज कराम आगे बढ़ते जाते हैं।

सबह खैर प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम पहुँच रहे हैं। सामीन, हज की सआदत अल्लाह ताला हर बंदे मोमिन को अता फरमाए और ख़ास इस साल हज पर जाने वालों का सफ़र अल्लाह ताला आसान फरमाए और उन्हें हज मबरूर अता करे। और अपनी दुआओं में हमें भी याद करना। अगली मुलाकात तक अनवर को रुख्सत की इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।

आविया प्रभु जो मानी यारो वैश्य हाथ मा वासरी कमरे छे खे ससुर मधुर छोरे लावता जाए छटा एवी छे के आव्या जाने मेघ शोधे छे राधा ने लागतु ना मन प्रीत मा राधा नी थाया मगन दूर थी देखाई राधा रूपाड़ी के जोई ने प्रभु थाया प्रसन्न वागता ढोल बोले छे वासरी घेलु थयु छे कोकोड सांभळी आंखों थी अंतर नी बातो कहवा आव्या राधा रानी एमने सौथी लागे वाली या बधी रीत चोरायु छे चित बांधी लीधी प्रीत गाता एना गीत प्रेम राधा साथे सगड़े छे कथित बस पड़ी जाए राधा बने एना मी के हेलो।

कदम तू अजड़ कोटड़ा वाड़ी सिंह वाड़ी तू वागा वाड़ी तू जय हो त्रिशूल धारी धारी चंद मुन ना वद पची जगे चामुंडा पूम पाड़ी पाड़ी ठिकाना दर्शी दुष्टों ने भर की एवी तू बावा वाड़ी आँखों में तेज हाथे तलवार जेथी सोबे घर हो गिरना तारा पर चामा ते जे छे रखड़ तू बोला भी नजीक उगाड़े सवार बौना पर रख तू जे छे तरस तू आपी दे जड़ तू आपी दे फड़ तू जी दे चढ़ियो हूँ तो आवी ने

शक्ति। मंगलवार 19 मई घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, आप सबका हृदय से स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे ऐसी कामना हम करेंगे। और श्रोताओं, कहते हैं कि हम सभी जीवन में शांति की कामना करते हैं। दिन रात हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अशांति से हम कोसों दूर रहे, फिर भी कभी कभार जो है मन अशांत हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। ऐसे में ईश्वर की शरण में जाने से सभी व्याकुलता, सभी अशांति अपने आप दूर हो जाती है। तो चलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत थोड़ा सा अपने जीवन से समय निकालते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं भगवान गणेश के नाम से।

जी हाँ, भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को तो दूर करते ही हैं, और जब विघ्न दूर होते हैं तो जीवन से चिंताएं भी अपने आप दूर होने लगती है। कहते हैं हमारे जीवन में चिंताओं का, अशांति का अपना वर्चस्व

स्थापित है। हम शांति की अहमियत, शांति की महत्ता को तब समझ पाते हैं जब उसकी खोज में निकलते हैं, या फिर जब मन या जीवन अशांति से भरा होता है, तब हमें पता चलता है कि जीवन में शांति का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है। कभी कभार ये शांति सिर्फ किसी जगह से नहीं, किसी व्यक्ति से भी जुड़े होते हैं। जैसे कि ईश्वर की शरण में जाने से मन शांत हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र होता है, वहाँ का वातावरण निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। वहीं पर हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके बारे में सोचते ही मन हमारा शांत होने लगता है। मन में जो भी इच्छाएँ, जो भी विचार हमें विचलित कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, उस व्यक्ति को देखने से, उस व्यक्ति के बारे में सोचने से शांति होती है। जैसे हम अपने माँ के पास जाते हैं, उनकी गोद में सर रखते हैं, तो किस तरह से मानो सभी चिंताओं से दूर हो जाते हैं। तो आपके भी जीवन में ईश्वर के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा या होगी जो आपके जीवन में शांति का प्रतीक है, जो आपके जीवन में करुणा का प्रतीक है। तो ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद ऐसे व्यक्तियों को हमारे जीवन में लाने के लिए। और बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को सदा सुखी रखे, सदा उनके जीवन में खुशहाली रहे, सदा उनके जीवन में सकारात्मकता रहे।

बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर। और श्रोताओं, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करती हैं। कहते हैं हमारा अतीत जैसा होता है वैसा हमारा वर्तमान होता है, और वर्तमान जैसा होता है उसी के आधार पर हमारा भविष्य होता है। जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हुआ, जो हमने किया, उससे हम ज़रूर सीख ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छे बुराई की परख करके हम अपने आज को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और आज अगर अच्छा हो तो आने वाला कल जो है उसकी एक अच्छी नींव होती है, और फिर अच्छी नींव हो तो आने वाला कल, आने वाला भविष्य भी अपने आप में अच्छा होता है। और बस ये कोशिश जो है हमें करते रहना चाहिए। कभी कभार हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते करते आखिरी पड़ाव पर आकर बस त्याग देते हैं सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि वो अंतिम पड़ाव ही थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बस थोड़ा सा और धैर्य अगर हम रखें, थोड़ा सा यदि और प्रयास करें, थोड़ा सा और विश्वास अगर करें, तो सब कुछ संभव हो जाता है।

कभी भी अपने जीवन को हमें जाया नहीं करना चाहिए, जीवन के क्षणों को हमें जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो पल जो समय हमें मिलता है वो बहुत ही अनमोल होता है, जो एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता।

0: शक्ति।
1: श्रोताओ, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना हम यही करेंगे कि हमारे मन में यदि कोई भय है, यदि कोई संशय है, यदि कोई दुविधा है, वो उसे दूर करे और हमारे जीवन को भय मुक्त करे। क्योंकि जीवन में यदि किसी प्रकार का भय होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हनुमान जी जो है, जहाँ पर शक्ति का प्रतीक है, निडरता का प्रतीक है, वहीं सभी प्रकार के भय और नकारात्मक चीज़ों को हमसे दूर करते हैं। तो चलिए हनुमान जी के प्रार्थना के साथ, इस हनुमान चालीसा के साथ भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। 11:30 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज भाषा में कार्यक्रम जिन की प्रस्तुति में। हमारी आपकी भेंट दोबारा 12 बजे होगी। तो तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: बारह बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है रेडियो आपके लिए हमेशा 24/7 अभी के लिए नेशनल नेशनल न्यूज के साथ स्टूडियो में आ गए हैं आसान से मिलते हैं नमस्कार
1: नमस्कार 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में हुए प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान स्थानीय निकायों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष नेता जुले रोंगाओ ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से कचरा संग्राहक और सामान्य कर्मचारी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पीएनक्यू के दौरान 2026 भर्ती अभियान में अलग अलग स्थानीय निकायों में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा गया, साथ ही रद्द किए गए आवेदनों की संख्या और जनवरी तथा फरवरी 2026 में सेवाएं समाप्त किए गए कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया गया। सदन में ये सवाल भी सामने आया कि क्या कुछ भर्ती किए गए लोग पुलिस मामलों का सामना कर रहे थे और क्या उनके पास साफ सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर नहीं था। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए भेदभाव के आरोपों के बाद संभावित जांच और उसके निष्कर्षों का मुद्दा भी चर्चा का हिस्सा रहा। कोंतोगल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मोका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस समय इनमें एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। याद दिला दें कि कोंतोगल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब दो समूह आमने सामने आए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे जबकि वहां इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इसी दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल के इस निवासी की लाश ग्रानम वकवा स्थित एक मैदान के पास पाई गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। विदेश स्तर पर कोंगो में एबोला के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

0: अब तक 131 मौतें हो चुकी हैं जबकि 500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार बीमारी अब कई नए इलाकों तक फैल चुकी है। युगांडा में भी एबोला के 2 मामलों और 1 मौत की पुष्टि हुई। WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वहीं अमेरिका ने कोंगो के लिए सबसे ऊंचे स्तर की यात्रा चेतावनी जारी की है और प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मॉकेट रोड नोत्रदाम में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की ईरान नानक की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनकी पत्नी कुदाबकस नानक के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: सुहाना सफर, सुहाना सफर।

घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:10. आज है ट्यूसडे 19th of May. रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है. मैं हूँ सुमी और आज सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक. सो हाउ आर यू, आप सभी कैसे हैं, दोपहर कैसे बीत रही है? ऐसे उम्मीद करते हैं सवेरे से दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई होगी. आज मौसम भी थोड़ा सा बादल है, ठंड भी है हल्की हल्की. और चलिए बदलते मौसम में आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए और हमारे साथ बने रहिए 2 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन सुहाना सफ़र. ये प्रोग्राम 12 से 2 बजे तक जो चलता है हर रोज़. और भूलिएगा नहीं, आप अपनी डेडिकेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं 4028070 पर. यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर. साथ ही टिकटॉक के पेज पर भी थोड़ी देर में हम लाइव होंगे, आपके साथ लाइव इन डायरेक्ट जुड़ेंगे. सो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में.

0: सुहाना सफर।
1: यस, दिस इज योर सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन। और आज मैं सुमी आप सभी का साथ देने के लिए आ चुकी हूँ कुछ पुराने गाने तराने लेकर। 16-17 नहीं अजी, ये जो गाने हैं न जाने कितने दशक पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही प्यार से हम इन गानों को सुनते हैं, इन गानों को पसंद करते हैं। और कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये गाने इस बात का बिल्कुल सबूत है। पुराने गाने होते ही ऐसे हैं जो हमारे दिल के कोने में कहीं बसे होते हैं, और बस कभी कभार इन्हें सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। तो चले, कोई खूबसूरत सा गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5250-6200 पर। इस समय हम हमारे टिकटॉक पर पेज पर लाइव भी है, वहाँ पर भी आप हमारा साथ दे सकते हैं। अभी के लिए परवरिश फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी लवली लिसनर्स के नाम। आशा जी, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार और साथियों की आवाज़।

सुहाना सफर सुहाना सफर चलिए दिस इज योर सुहाना सफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। दोपहर के 12:28 हो रहे हैं, दोपहर का वक्त है। ऐसे अगर घर पर है या काम पर लंच ब्रेक में हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, जहां कहीं से भी जुड़े हैं, थैंक यू सो सो मच। लंच करते करते साथ दे रहे हैं तो आप सभी को बुना पीछी शुभ आहार हम कहेंगे। अच्छे खाने के साथ अच्छे गाने, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है ना। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे तो आपके मैसेजेस तो हमें मिल ही रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम सबके नामों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ललित मोहन भट्ट, हेलो ललित जी। यालेश श्याम हमेशा हमारा साथ देते हैं। कविता जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। रुमिता खान कुवैत से जुड़े हैं। एजे, हाय एजे, कैसे हैं आप। प्रकाश है, नाजियाना है, हेलो सूर्या, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। शरीफ दुखन जी, आपका भी वेलकम है। नूरेदीन, सुमेधा, मोहिनी, वी हैव प्रिया, वी हैव माया रामदोस जो मोताय ब्लॉन्स से हमारा साथ दे रही है। संजय बुधू जी कोतेट से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो माधुरी जी, थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। वी हैव अमेली, विशाल, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो गाना है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गाना है, रफ़ी साहब की आवाज़ है। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन आप है तो हम हैं, आप है तो ये प्रोग्राम है, तो आप सभी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है और ये गाना आप लोगों के लिए चल पड़ा।

लाइफ को जीने के लिए, शांति से जीने के लिए बस थोड़ी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। हद से ज़्यादा कुछ भी जो है वो हमें परेशान कर देता है। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अब्दुल रशाद जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव वर्षा, वी हैव रज़िया जुमन जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। सावित्री जी, आपके भी साथ के लिए शुक्रिया। वी हैव लीना, साकुन, जीवन, ऋषिता, सज्जन जी, सूरज जी, श्वेता, प्रीतम, मीता, याशना, रीता, सभी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। अनिल जी, आपके भी साथ के लिए शुक्रिया। नाजियाना नोवेल फ्रांस से हमारा साथ दे रही है। एंड देन वी हैव प्रकाश, अगला गाना आपकी ओर से आपकी वाइफ मेधा के नाम, सभी सुरूप परिवार और सभी किस्तु परिवारों के नाम हम करते हैं। रतन जी, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच। एजे, अगला गाना आपके मामा इंदिरा के लिए, साथ में अंजू के नाम, और यही गाना जाता है शानिया और रिहाना के लिए। सतरूपा जी भी हमारा साथ दे रही हैं। यहाँ पर संजीव जी ने इस अगले गाने की फरमाइश की है, तो संजीव जी ये अगला गाना आपके लिए। यही गाना हमारे तमाम सुनने वालों के नाम हम करते हैं जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शीला जी ट्रॉबुचिक से हमारा साथ दे रही है, कह रही है बेटे कवि के लिए अगला गाना हो जाए जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, और ये गाना वो उनके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। ऐसे सूरज जी, आप का जो गाना है, आपने जो गाना अभी मांगा है वो शायद 90s का गाना है, और इस प्रोग्राम में हम पुराने गाने चलाते हैं 60s, 70s, early 80s के। सो जो गाना आपने मांगा है वो अभी तो हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन आप WhatsApp के ज़रिए भी हमारा साथ दे रहे और यहाँ पर TikTok पर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। अगला गाना आपके नाम और सभी सजादा फैमिलीज़ के नाम हम करते हैं। ऑलराइट, और चलिए गाना चलने ही वाला है, जर्म फिल्म से लिया गया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और आपका भी साथ हमें यूं ही मिलता रहे।

0: सुहाना सफर।
1: तो चलिए, सितारा फिल्म का ये जो खूबसूरत सा गाना है अभी आप सुन रहे थे, थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमान। हम भी ये मानते बस

चलिए सुहाना सफर के इस खूबसूरत सफर में आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी है, इसे हम आगे ले जाते हैं। नाजियाना और रेशाद जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जो है रफ़ी साहब उनके फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। सो अगला गाना जो है रफ़ी साहब की आवाज़ में है, अभिलाषा फिल्म से लिया गया, वादिया मेरा दामन। तो ये गाना आप लोगों के नाम, राजेश जी शुक्रिया साथ देने के लिए, सल्लू है यहाँ पर, दीप्ति, योगेश, रानी, वर्धन, पल्लवी जी यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है। अंश आपने गाना मांगा था लेकिन आपने गाना क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आया, तो ये जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं वो आपके लिए और आपकी ओर से आपकी प्यारी दादी के नाम हम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी दादी को ये गाना ज़रूर पसंद आएगा। वी हैव स्वीटी, वी हैव मनीषा, सभी बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। सतरूपा जी हमारा साथ दे रही है, दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजू जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया।

0: RM3 Radio.
1: और चलिए इसी छोटे से गाने के साथ हम बढ़ेंगे एक बजे के समाचार की ओर। समाचारों के उस पार सुहाना सफर, ये प्रोग्राम जारी रहेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।
2: हर

0: टाइम चेक 1 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि भानुदत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया था। सरकारी नेता आज राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या से संबंधित रहा। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थाई आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त कर दिए गए थे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ये कदम कानूनी सलाह मशवरे करने के बाद उठाए गए। प्रधानमंत्री ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची भी सदन में पेश की। साथ ही जनवरी और फरवरी 2026 में जिन भर्ती कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई उनकी संख्या पर भी उन्होंने जानकारी दी। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने की अनुमति देना है, जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र तथा संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा। कल नया चांद नजर आया, जिससे मुसलमानों के लिए इस्लामिक कैलेंडर का अंतिम माह धुलहिजा शुरू हो चुका है। ये दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बड़ा ही पाक महीना माना जाता है। इस माह के दौरान हज अदा किया जाता है। अराफात का दिन भी इसी महीने पड़ता है और ईद उल अधा भी, जो कि कुर्बानी का प्रतीक है। विदेश की खबरों में, कोंगो गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के

0: को मामलों का पता लगाया गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मार्केट रोड नोत्रदाम में, मार्केट रोड नोत्रदाम में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के जनाब ईरान ननक जो बीबी क्वाफेयर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी बीवी खुदाबख्स ननक के मकान मार्केट रोड नोत्रदाम से उठाकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। रारोड घोंबे में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के जनाब महमूद सदुल्ला जो महमूद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुपहर 3:30 बजे उनके मकान रारोड घोंबे से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए घोंबे की मस्जिद और दफनाने के लिए कपमालोह का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे पंचानवे दशमलव छः 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: सुहाना सफर
1: चले घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 1:05 होने को है। आज है ट्यूसडे 19th ऑफ मई। सुहाना सफर इस प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर 2 बजे तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। और जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स टिकटॉक के जरिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और चले अगला गाना इंदिरा लॉटन जी आपके नाम करते हैं, मौदाल बेयर से साथ दे रही है। गाना जाता है यहाँ पर पेपे कृष्णा दीक्षा सभी गोपी परिवार के नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं ललिता जी कालबास से हमारा साथ दे रही है, पूजा प्रकाश कविता उर्वशी अनुराधा जी आप लोगों के साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस पल को यादगार बनाते हैं, कुछ खूबसूरत गाने तराने आपके लिए चलाते हैं। और अगला जो गाना है इस सेकंड आवर की शुरुआत करते हैं मुकेश साहब और आशा जी की आवाज़ों में इस गाने के साथ। ऐसे थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि कौन से सिंगर्स है, पुराने गायकों की बात करें तो बहुत से लोगों ने मुकेश साहब का नाम लिया, आशा जी का नाम लिया। तो जो अगला तराना है मुकेश जी और आशा जी की आवाज़ों में है, उम्मीद करते हैं ये गाना आप सभी को पसंद आएगा।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। चलिए यकीनन हमारा ये सफर और भी सुहाना हो जाता है जब हमारे लवली लिसनर्स और फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें आप लोगों से इस तरह से लाइव और डायरेक्ट जो है बात करने का मौका मिलता है। और चलिए यहाँ पर जानकर अच्छा लग रहा है कि कौन कौन से सिंगर्स आपके फेवरेट है, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है। तो अगला जो गाना है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुझको, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में ये गाना होगा। महेंद्र कपूर साहब के गाने भी बड़े कमाल के रहे हैं, ऐसे काफ़ी रोमांटिक गाने भी उन्होंने गाए हैं, काफ़ी दर्द भरे नगमे भी गाए हैं और देशभक्ति पर आधारित भी कई गाने उनके हैं। तो ऐसे में ये गाना माधुरी और परी आप दोनों के नाम। आज दोनों ही बड़ी चुप चुप सी है, क्या हुआ, नाराज़ है, किसी ने नाराज़ किया है आप दोनों को? तो चलिए अगला गाना आप दोनों के नाम हम करते हैं। यहाँ पर शाहिद जी पाकिस्तान से हमारा साथ दे रहे हैं, ज्ञानदत्त जी ये गाना आपके लिए भी हम चलाएंगे, वर्षा जी थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और यहाँ पर बड़े ही प्यार से हमारे साथ जो है जुड़ चुकी है कल्याणी जी, थैंक यू सो मच आपके इस लवली मैसेज के लिए। और अगला तराना महेंद्र कपूर साहब के सभी फैंस के नाम चल पड़ा।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: कहते हैं जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत और हसीन हो जाता है जब अच्छे हम सफ़र होते हैं, जब अच्छे रिश्ते नाते होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, सहेलियां होते हैं। और लाइफ में एक ना एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, एक ऐसा दोस्त जिससे हम अपने दिल की सारी बातें कह पाए, बेझिझक होकर अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर पाए, जो हमें कभी जज नहीं करेगा, जो हमारी कभी किसी बातों को एक गलत नज़रिए से नहीं देखेगा या देखेगी। तो आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है, अगर उनके नाम कोई गाना करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा साथ दीजिए। अभी के लिए गाना जाता है आयशा रीना आपके नाम पल्लवी जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। येशना है, निशी है, हाय शबनम, हाय नीता, मिलन, शुक्रिया साथ देने के लिए। अनीता जी आपका भी मैसेज हमें मिला, नबीला, रानी, आशु, वीना, एंजल, अगला गाना आपके नाम और आपके पति रुकेश के लिए। वी हैव छाया, वी हैव सिलवाना, सभी बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चले यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो तराना है बालिका वधू फिल्म का गीत है, अमित कुमार जी की आवाज़ में। ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा तराना है। ऐसे फिल्म में जो एक्टर है उनका नाम हमें पता है, एक्ट्रेस का नाम नहीं पता है। बालिका वधू इस फिल्म में बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, इस गाने में सचिन नज़र आए थे। अगर आपको एक्ट्रेस का नाम पता है तो आप हमें बताइए कि कौन सी एक्ट्रेस थी इसमें, हम उनका नाम भूल गए हैं, तो आप बता दीजिए हमें।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

बिछड़े सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में इस समय जो है हमारे साथ प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रही है। प्रकाशवती जी शुक्रिया आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए और ये गाना हम आपके नाम करते हैं, उम्मीद करते हैं गाना आपको पसंद आएगा। आपके नाम और आपके पूरे फैमिली के लिए थैंक यू सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। ऐसे जितने भी ज़्यादातर जो गाने हैं वो आप ही के रिक्वेस्ट पर हम चला रहे हैं। गुड आफ्टरनून माई डी जे। राइट, अगला गाना सचिन जी आपके नाम, रजनी शर्मा जी ये गाना आपके लिए भी हम करेंगे। देश परदेश फिल्म का ये गाना होगा, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में, और उम्मीद करते हैं ये गाना आप लोगों को ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। और जितने भी हमारे सुनने वाले यहाँ से साथ दे रहे हैं आप सभी के नाम भी इस गाने को करते हैं। अनुराधा जी शुक्रिया साथ देने के लिए। प्रकाश जी थैंक यू, जो गाना आपने मांगा है थोड़ी देर में मौका मिला तो ज़रूर हम आपके लिए चलाएँगे। हाय नेहा कैसी है आप, हाय शीला जी, हाय श्यामा गोकुल जी, बबीता जी आपको भी नमस्ते, शुक्रिया साथ देने के लिए। और शाहिद इकबाल जी आप भी जुड़ चुके हैं। राधा सुबी के बिहाबानी, हाय माइक स्वीटी, विजया लक्ष्मी जी थैंक यू साथ देने के लिए, माधवी जी थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर चलिए इस गाने की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो गाना है देश परदेश इस फिल्म से हमने लिया है आप सभी के नाम।

और चलिए यकीनन हंसते हंसते ज़िंदगी का ये जो रास्ते हैं ये यूँ ही कटते रहें, ज़िंदगी का सफ़र कटते रहे और किसको क्या चाहिए भला। अभी के लिए अनीता जी हमारा साथ दे रही है फ्लिक ऑफ लक से। अगला गाना इनके पति राज के नाम बेटे अंतिश अंकुश के लिए, बहू है मानिशा आशिमा, पोते हैं हिमेशा आद्या आंच, सभी रेडियो मनोरंजन के टीम के लिए, पूरे रेडियो मनोरंजन टीम के लिए, और अनीता जी ये गाना खासकर आपके लिए भी।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या।

0: सुहाना सफर
1: यकीनन सुहाना सफर, सुहाने गाने, सुहाना मौसम और ये सभी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ को भी और अच्छा बना देते हैं, है ना। जब कोई अच्छा गाना सुनते हैं, जब कोई खूबसूरत सा रोमांटिक सा तराना सुनते हैं, कोई खुशी वाला गाना सुनते हैं, तो वो सारे वाइब्स हमारे भी लाइफ में आ जाते हैं और वो सारे वाइब्स हम भी फील करना शुरू करते हैं। तो चलिए ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, इन गानों को गुनगुनाते रहिए। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है, अगला तराना आप सभी के नाम हम करेंगे। यहाँ पर ज्योति जी शातो बनारस से हमारा साथ दे रही हैं, प्रोग्राम का मज़ा उठा रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के साथ साथ नॉर्मल मैसेज भी हमें करते हैं, तो ज्योति जी आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बड़े ही प्यार से आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। गाना जाता है रेखा के नाम, सुरेखा के नाम, सभी मधव फैमिली के लिए जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। और यही गाना जाता है अब्दुल और सायरा बानू जी, आप दोनों के नाम। हमेशा की तरह आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच।

साथ दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून आप लोगों को भी, और चलिए यही गाना आप लोगों के नाम भी जाता है। और यहाँ पर वो सात दिन फिल्म का ये तराना है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, और जब प्यार होता है तो ज़िंदगी अपने आप में खूबसूरत हो जाती है ना।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। और इस दो घंटे के दौरान सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आपका बेशुमार प्यार, आपका बेशुमार साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, गानों का सिलेक्शन आपने इंजॉय किया। फिर चाहे रेडियो के ज़रिए आप जुड़े हो, हमारे MBC प्ले के ऐप के ज़रिए जुड़े हो, और या तो फिर टिकटॉक पर अभी हम लाइव थे तो वहाँ से आपका साथ हमें मिला, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और चले जाते जाते यह आखिरी गाना आन मिलो सजना फिल्म का ये तराना है, आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद रत्ना पदारथ की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी। इस प्रोग्राम को हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। हैव अ लवली डे अहेड।
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मनोरंजन।
3: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राज्यसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि भानुदत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया है। ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या से संबंधित रहा। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थायी आधार पर नियुक्त लगभग 1500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। रविवार रात को कौतूहल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और हिरासत में रखा है। इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद एक क्लिनिक में भर्ती किया गया। रविवार रात को कौतूहल में दो टोलियों के बीच बहस शुरू हुई। इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया। गोलियों की आवाज सुनाई दी, दो वाहनों को आग के हवाले किया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने की अनुमति देना है जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र तथा संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा, ये विधेयक केवल संविधान की समीक्षा पर केंद्रित रहेगा। विदेशी समाचारों में कोंगो में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। वहां के गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले पाए गए हैं जिनके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई चलाई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के दो मामलों का पता चला है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मॉकेट रोड नोटरडाम में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री ईरान ननक जो बेबे क्वाफेयर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी कुदाबक्स ननक के मकान मॉकेट रोड नोटरडाम से उठाकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM।

0: avenue Bougainvilliers. Tamaremé, avenue Bougainvilliers. Tamaremé, 71 साल के 71 years old के श्री लाल देव जगन्नाथ, श्री लाल देव जगन्नाथ, जो मुसलमान वीआरएस कास्कावेल के रहने वाले थे और जो पत्नी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के मकान एवेन्यू बुगेनविलिये तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले सभी दर्शकों का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं आज की उड़ान की कहानी। जैसे हम सब जानते हैं कि ये उड़ान की कहानी सशक्त महिला की कहानी, समाज में आज महिला किस स्तर पर पहुंची है ये आप तो जानते ही होंगे, चाहे फिर वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर यानी अपना व्यवसाय अपने हाथों से जिन्होंने बड़ा किया हो। और आज हमारे साथ एक इतनी प्यारी चाची जुड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने इस व्यवसाय को खड़ा किया, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और मुश्किलों का सामना करते हुए मुस्कुराते हुए कभी ना हार मानने का जो प्रण उन्होंने लिया और आज वे हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं श्रीमती सुनीता करनौत। पर आज हमारे साथ जुड़ने से पहले हम ज़रूर उनकी शान में कुछ कहना चाहेंगे कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इसीलिए हर एक महिला के मन में जहाँ पर एक मन में विश्वास हो, कुछ करने की चाह हो और साथ ही साथ मुश्किलों का सामना मुस्कुराकर करने की हिम्मत रखती हो, उनको बस कहते हैं ना कहीं प्रगति मिल ही जाती है और सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता। तो चलिए आज ऐसी ही सशक्त नारी का हम करते हैं स्वागत। हमारे साथ है चाची सुनीता। नमस्ते सुनीता जी।
2: नमस्ते रत्ना जी,
1: कैसे हो?
2: अच्छा है।
1: और आज तो बड़ा जोली लौकत हुआ तू। हाँ। और जैसे तू मुस्कुरा के हमनी के आज स्टूडियो में उपस्थित हो गल हुआ, आज जानब से तोहर कहानी। हाँ। तोहर जुन कैसे तू शुरुआत कर ल, पहले हम बता देंगे सभी को कि सुनीता जी बहुत ही प्रकार के मसाले बनाती हैं, बहुत सारे प्रकार के आचार बनाती हैं और उनकी आचार की जो खासियत है वो है उनका प्यार, और उनके प्यार के साथ उन्होंने जिस तरह से वो आचार तैयार करती हैं, जिस तरह से वो मसाले तैयार करती हैं, खाओ तो आपको लगे कि नानी दादी के हाथ का खाना आपने खा लिया, और ऐसी ही बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आज के साथ है। चलिए जानते हैं सुनीता जी कितना बरिस से है काम तू करत हुआ?
2: हम है सीजन हो गल बाटे।
1: हाँ।
2: जिसने 2000 से इस काम शुरू कर लिया है।
1: हाँ, हाँ।
2: आगे हम निजीन में काम करत अली।
1: अच्छा।
2: जब निजीन बन हो गल।
1: हाँ।
2: अब दुगो लड़का बा।
1: हाँ।
2: घर द्वार बनाए के बा।
1: हाँ।
2: तब अब घर में बैठल नहीं जाए पास के काम बिचो कर ऐसा काम करके।
1: हाँ।
2: अब हमने बोलब सा कौन काम करब सा, तो जो हमने के बड़ा आदमी वन दादी दादा नानी मौसी, तो हमरा बोलक सतवा ना कोई नहीं बेचेला, जे सतवा बना के बेच तोरा के लिए मिली। तो सचमुच के हम शुरू कर ली सतवा, हमर मौसी आई सामुनी रहत रहल अभी ऊ भी हमर बीच नहीं बाटे।
1: हाँ।
2: आई शुरू कर ली सा सतवा से, आई सतवा जब बेचाए लगल तब एगो दूसर मौसी से मुलाकात होल, तब लग अरे सुनीता तू कसार बनाए के हम तोरा सिखा देव, तोरा तू किलियो तोरा खुदते रही। तब हमने सचमुच के बोला

0: हाँ हम तुरा सिखा देव सचमुच के ऊ भी नहीं हमार बेच ऊ पाँव पालने रहता है कसार ऊ बना दिलक तो हम शुरू कर ली फ्लाक से कमुआ शुरू कर ली सब फ्लाक ले जाए के कसार तब ऊ में मस्त हो गई सा ऊ के लिए खोजते रहला अब हमरा नहीं पड़ेला उ लोग के खोजे के उ लोग हमरा खोजेला
1: मतलब एगो एगो काम ऐसा नीमन से तू शुरू कर देला जोन आदमी तोहर है जोन स्वाद है ओकरा मिल गल तो अब वो हमेशा तोरा
0: कमान दियन सा सिपा परिवार के जरूरत बा तो लोग हमरा सुने करेलन
1: तो चाची है सब काम शुरू करे के अगाड़ी तू कोनो ट्रेनिंग ले ले रहलन
0: है सब वजह फैमिली हमने के ट्रेनिंग देला फिर से वजह तो फोने बगल से हई मैडम के प्रोग्राम चलत रहा हाउ में हमने के लाफो मिलत रहा कू मिले के लोकाजो मिलत रहा तो हम सब कू ले ली है जब है कू ले ले ली सब लाफो सगरे जाए लगली सा तब थोने पोने बगल ढुकली सा तब हुआ वधल हमने के लाफो मिले सगरे सगरे तब हुआ मिसलुक सुने करी है बगह चैनला जाए के इतना अच्छी चैनला तीन दिन खातिर पारे कर दे के चार दिन ना पड़े चार दिन के चैनला कोमन टोर पारे कर दे के अब जाइबा तू हुआ चैनला 7 बजे ढुक जाए के 9 बजे अपन घरे आइबा
1: तो मतलब हुआ तोरा एगो एगो एगो दूसर कालीते के एक्सपोजर मिलल और जा पर जैसे तोरा जस्ती खुशी मिलल कैसे
0: खुशी मिलल
1: एगो नोवल एक्सपीरियंस जैसे बोलल जाला और चाची जब तू शुरू कर ले रहा जैसे तू बोला था सत्वा के साथ तू शुरू कर ले रहा तब पहला जोन क्लियों तोहरा मिलल रहल मतलब कैसे तोहर कौन अनुभव रहल मतलब कौन बस की एगो नवा काम जब शुरू करब तो पहला तो एगो कॉन्फियंस चाहिला हिम्मत चाहिला कैसे तू आपोषे करब कैसे तू ओकरा कोव्यक करब एगो चीज किने के तो कैसे तू कर ले रहलन
0: हम जब सतवाले के गईली तब हुआ पर एक जना बोलक कौन छ बेटी तो हमारी दादी सतुआ है तब बोलक सच्चे के तब का में पिसला हुआ हमारी दादी है जटा बा ना जटा में पिसला बोलक तो लगे बा हमारी हाँ हमारे लगे ओकरी मुसर सब बा तब बोलक द त हम ले जाए ला घरे जे अच्छा रही तो हम फिर से आप तोरा खोजे तब सचमुच के दादी गल ओकर हौ जी मौस के फिर से आल हम निकल गे बोलक तोरा आशीर्वाद रही है कमा चली तो
1: बस कि काहे पहला के आदमी जाता में पिसल
0: जाता में पिसल
1: अभी अभी ले तू जाता में पिस पिसे ला
0: अब जाता में नहीं पिसिला सा अब तनी कुरा तारा बराबर नहीं बाटे अब मशीन में पिसिला सा
1: सेलमा ओकर मु पारे बा
0: पागे बा पागे ओकर जब ओकर में तो तो सब ओकर सब चीज जन बराबर रही तो ओकर गु पागे रही
1: तो चाची जब तू शुरुआत कर ले रहल त कोन कोन मुश्किल के तू सामना कर ल
0: जब कोई रही वजह जब फोमेफा जब एगो काम करब तो ढेर कोई डेरा हला जे कमा चली कि नहीं चली
1: हाई तो पहला सवाल मन में आवेला
0: चली कि नहीं चली इतना डिपेंड करत है जे कमा चली कि नहीं चली तो हम नहीं डेराइली हम बोली जोन हो तो भगवान के हाथ में बा जब हम शुरू करीला जब सब कोई खोजेला एक मुठ्ठी खाए के एक मुठ्ठी आसमान दस सब कोई के बराबर मिली
1: लेला
0: चेहरा नहीं दे रही के हम नहीं दे रही ली तब आले आले तब हमार जोन गुरु रहल बोलक अब हम तोरा सिखाब जजाम पकाए के जोन शादी में गीत गवाई में से भी करे लंग सा
1: हाय हाय के सिखाई लग तोरा
0: उवे सिखले रहल हमार वही गुरुजी जोन कसार बना के बतेला तब ढेर कोई दूध डालेला पिस्तार डालेला तो हमने एक मुँह के सवाद नहीं दिखली सा हई जजाम एगो दवाई है जैसे खोखी होला हई खोखी नहीं जाता वो एगो बुत तुर के बोबो सर मुँह में डाल लेबा उस की तुहर खोखी बंद कर दे
1: मतलब एगो एगो ऐसा एगो नुस्खा है दादी के नुस्खा जैसे पहले बोलल जात रहल कि कोनो भी घर का घर में जो चीज बा वो ही तोहर औषधि
0: है अच्छा करी हां कैसे बोलबा हम देव कितना दवाई पी उ नहीं गल चीजवा दवाई बा घरवे में बा से हमने के हौलेवा नहीं सुझिला
1: सच्चे के बात अब काहे के घर में तो पड़ल रहेला
0: पड़ल रहे
1: जजाम
0: आज जस्ती फासिल बा अब उकर में गो जीते पिया चा गरम साथ में पी लेबा तो
1: तो जस्ती नीमन से तो हर जनलेस तो माँ हाँ तनी सोफे कर दे और खोंकी जोन हाँ वो नीमन हो जाए अच्छा चल जाए
0: हाँ आर है कसर वो बोली रहा सा यो ढेर काम के चीज बा कसा कैसे कहीं महिला लोग के चीबे बोला तक खाली नहीं कैसे खोंकी बा हड्डी दुखाला
1: सर्दी और अभी तक ठंडा ठंडा
0: के समय में चला जस्ती इस्तेमाल करेगी
1: और जेकरा अच्छा लगेला कसार फजीर के एगो कसार के

0: हाँ, तो खा ले ले तो मजा दिन भर में तोरा शक्ति मिली
1: शक्ति मिली हाँ, हाँ। और जब कसार बनेबा ओकर में ढेर मेधा डालला
0: कौन सी डालला
1: ढेर ओकर में ढेर ओकर जन ढेर
0: हाँ मतलब ओकर जन जेपी
1: जेपी सा तब ओ जे डाल देला त हई कोगे खुगल
0: कितना कितना जेपी सा ओकर पड़ला चाची
1: पहला वो जिस रहेला ओकर में लाओ जिस रहेला सिनेमा हमने कंचा जजाम के कसार नहीं बनायला
0: अच्छा
1: ओ कंचा जजाम के कसार प्रिस की तो आजू नहीं सक रखे
0: अच्छा मतलब ओकरा चाहिला एगो सुखल
1: हाँ सुखल
0: हाँ,
1: सुखल जजाम बोलल जलाओ के जजाम ब्लॉ यानी कि यति जजाम
0: जो हिंदी में बोलल जला सोंठ
1: सोंठ
0: सोंठ हाँ, हाँ, हाँ।
1: सोंठ सिनेमा उतनी महंगा है
0: हाँ।
1: सिनेमा वो इस्तेमाल करवा तो बहुत
0: ढेर दिन रह जाए
1: ढेर दिन उसकी बरिसो दिन रख जाए ओके फ्रिजिडेर में डाल बरिस दिन हमसे ये कर ले है रख के ये कितना दिन जाला तो हम सब अपन किलियों लोग के बोले
0: हाँ तो जैसे तू शुरुआत कर ले रहल पहला तू बोले सतवा से शुरू कर ला और फिर तोरा मिलल कसार के और फिर तू शुरू कर जैजाम के तो जन तोहर गुरु रहल उ तोरा सब कुछ बतलैलन
1: हाँ वो हमार पर कॉन्फिडेंस करे
0: हाँ
1: वो बाजो बाकवा में लेगिम बेचत रहल
0: अच्छा
1: हाँ तब बाको बाजो बाकवा जब गईली सतवा लेके तब बोल
0: काहे के हम जितना जानत हैं ढेर कोई नहीं बतलावे
1: नहीं बतलावे
0: ते तोरा उ सेखेवा नहीं बोली कि ऐसे पकइए ऐसे ऐसे पकइबा त निमन से पकी बस कि ढेर कोई आदमी लोग नहीं खोजलन से अपन जन सेखे ह पोताश करे सेलमा हई जन ह उही खातिर ओकरा गुरु बोलल जाला कि उ तोरा सब निमन से सिखैला
1: निमन से सिखैला आर हई बोललक सेलमा ई तोरा हम तोरा खाली तोरा सिखावत है बस के उ हमर मानिया ओकर पर गल बस के लेगी मु बेचे तब बच्चाल करे निमन निमन तब बोली आई हम तोरा सिखा देखे हम तोरा कहाँ पहुँचाए
0: फिर ओकर बाद कुतू नवा कौन चीज शुरू कर
1: तब शुरू कर ली सा मसाला
0: अच्छा
1: हाँ मसाला तब हई मसलवा अब कौन कौन से पीस डलाए
0: उ
1: हमर नानी हई कास्तेल रहा था लंगसा हम जीन तब उ हमर नानी के तकारी खाइबा तो उ थोड़ा भूख लगते रही
0: अच्छा मतलब खाई के हाँ, जैसे पेट भर जाए पर हाँ, मन नहीं भरी
1: हाँ, तब हम हमर नानी के तकारी
0: हाँ,
1: हम बोला नानी तू कुछ कुछ डाले ले नानी है तकड़िया में बोली जैया तू देसी दो कुछ करे के तब बोलिए
0: बोलिए
1: हाँ, हाँ, तब अब देखब नानी रोज में मसाला पीसी
0: हाँ,
1: सब करे घे जौ डाल के सेलमा हमर नानी पीमा खाई के जस्ती तीता पकावे तक
0: और हाँ, अच्छा लगेला
1: अच्छा लगे हाँ,
0: काहे के रोज पर हाँ, जोन पिसल मसाला रहेला
1: हाँ,
0: ओकर स्वाद दूसर कलिते रहेला
1: तू जब सब एक है जो दलबाई गु मसलवा
0: में हाँ,
1: तो उही अच्छा बा
0: हाँ
1: हाँ तू कहली अपन पुमदामू लाई जनम डाली बा
0: हाँ
1: हाँ अपन काहे पुले जीते उ डाल के छोंक देबा हाँ, जब मसलवा ले गईली तब हमारे गो का मकदबे आगे किनलक फ्लाक में
0: हाँ
1: तब बोलक चाची दूसर चमेन के सुने करके बोलक चाची वो मसाला बिया बिया बे मु बोलू मन फामी तीन बिया कहूँ तब मसाला ला
0: हाँ।
1: मैं तब से नहीं देखू खास बोली
0: हाँ।
1: तब से वाह क्वा कैपी भी चल जाता रही मगाजें भी चल रही सर कैसे सिक्कों में शहर में हुआ बड़ा बड़ा बाचिमा में काम करे लंग सा मैडम लोग के लोग आज
0: हाँ।
1: लोग फोन करे लंग सा वजह सब कोई मिल के
0: हाई
1: एक कु वाजा सब जमा करे लंग सा
0: हाँ जे एक एक हाँ, बगल एक एक जगह पर ढेर
1: हाँ,
0: मदाम तोरा मिल जाला हाँ क्लियावा मिल जाला
1: हाँ। तब हम सब उलो के सब एन एन कोते करके
0: हाँ,
1: तब साथ में डाल के हम खाली जाएला वो लोग संगे छोड़ के हम चलेला
0: हाँ
1: हाँ इस्तेमाल करे कि नहीं बा ठहराव रहे कि नहीं बा
0: हाँ,
1: तब वो लोग हमरा फोन करी हाई बजेये
0: हाँ,
1: तो हम जब वहाँ जाब तो लोगों के टेलीफोने कर
0: हाँ, हाँ,
1: जे मुनफिनिया हुई भी
0: हाँ,
1: हाँ तो लोग उतरियन से नीचे
0: तो हाई एगो एगो कैसे बोलबा कि जैसे मेहनत करे के तू कोनो बहाना नहीं बनाई
1: नहीं नहीं
0: शुरुआत जब कर लग तब भगवान के भरोसे तू आगे चल ले जाला और कैसे बोलबा कि एगो जब तू शुरुआत कर लग जैसे तू बोलत हवा एक के बाद एक एक, एक, एक के बाद एक नवा नवा चीज तू आजूते करे गल और सुनीता जी हाई एगो बात पूछब जब तू बोले रहलन शुरुआत में जब तू बोले लीजिन बंद हो गल और जब तू सोचे के शुरू करल कि अभी कौन चीज करे के
1: काहे
0: के एगो महिला जब पूरा जिंदगी काम कर ले हवन त उ नहीं खुशी रही एगो जगह
1: बैठे के
0: त जब तू अपन बूढ़ा के बोलन कि हम खुशी हई एगो काम शुरू करे खातिर हाँ। तो ओकर कौन कौन ओकर अनुभव रहल कैसे कैसे उ तोहर बात के लेलक
1: तब बोलूं बोलक नहीं कानी काम होई कि नहीं चली कि नहीं फाचगी होई बे हमने फाचगी होई बे तब न पैसा मिलेला
0: हाँ।
1: तब न शांति मिली हम नहीं हम

0: corrupt. Mm-hmm. Homme sié corrupt corrupt. Ha ha. Ah, t'as voulu guetter toi. Seulement, il n'a voulu qu'il n'aille. Ouais. Ouais, dernier l'heure, il a marre parti. Il a marre sad de l'homme. Eh. Oui, ça pisse. Ha. Homme l'a voulu bounder. Hey, ça boundier. सब भून के स्टाले कर दे वाप हम जा पाऊं दे वो काम करे हाँ. हम आप तो सब पीस के तामीने करके मिलोंगे करके रख दे
1: यानी एक तरह से हाँ? ओकर योगदान ओकर जो हिम्मत ओकर ओकर हाँ. हिम्मत मिला हाँ. उ जे जे देखला कि तू भी मेहनत करत हाँ. हुआ तो उ तरह जैसे देखो कहां से निकला उ तरह कुरास देला और
0: तरह बस के उ जाना था घरवे खातिर करा था हां देव खातिर हमनी के खातिर ओ लोगे खातिर लइकवे रो
1: खातिर करा था और एगो एगो कैसे एगो मैडम जब काम करा था महिला जब हाँ. घर के काम करता तो वो हाँ. चाहे जैसे बोला बोला कि घर के विकास खातिर लाइक हाँ. आगे बढ़ी पढ़ी घर बढ़ी हाँ. घर में तोहरा कुछ चीज किने के बाद हाँ. तो, तो, तो, तोहर हाथ में पैसा बा हाँ. तोहर हाथ में पैसा बा और ऐसे हाँ. तू अपन आत्मनिर्भर बनवा हाँ. और जीवन में आगे बढ़े हाँ तो सच्ची में देखा जाए तो आज की जो महिला है वो यही सोचती है कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार को हम किस प्रकार से आर्थिक तौर पे उनको सपोर्ट दे सकते हैं और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे कार्यों से जुड़ी हुई हैं जहां वो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं अपने बारे में सोचती हैं और अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात तो है नहीं तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं आते हैं अभी थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए

0: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। उड़ान तो सभी देखते हैं, जब उड़ान भरनी शुरू कर देते हैं तो सभी की नज़रें उस पर होती है, पर उड़ान भरने से पहले आपने कितने घाव झेले हैं ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। और आज की ये कहानी हर एक महिला की कहानी, और आपने अब तक देखा होगा कि हर महिला की कहानी एक दूसरे से अलग और सच में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक। और आज हम आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं काविश, हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा, और हमारे प्रोड्यूसर अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में बिल्कुल अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और इस वक्त ये कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर प्रसारित हो रहा है। जी हाँ, आज हमारे साथ है श्रीमती सुनीता कनौत जो आचार बनाती हैं, मसाले पीसती हैं और साथ ही साथ कसार बनाती हैं और ऐसी अनगिनत चीज़ों के साथ बस अपना पर्सनल टच देती हैं। पर ये आसान नहीं था, यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हुआ सफ़र है। चलिए जानते हैं सुनीता जी, जब पहला हला तू फास कर ले लहन, एगो बड़का प्रॉब्लम, एगो बड़का समस्या, जैसे तू बोला कि शुरुआत तू कलत जौता पीसे के साथ, जौता पीस के तू हई बनैलक सतुआ, बनैलक जे पी सब खाजे कलक सिलमो, कब तोरा लगल कि अब एगो समय चलाल बा, अब तोरा चाहिला एगो मासिन किने के, कहे के जैसे तू बोलत हुआ दिनवा जैसे जाता शक्ति उतना पारे ही नहीं हा। तो कैसे कैसे तू सोचल एगो मासिन किने के?
1: हम सोचली वजह जब देखली पूजवन बढ़ल जाता कि हाँ बढ़ल जाता,
2: हाँ
1: अब खोजत हन सा,
2: हाँ
1: तब बोलूम के बोली चल अब हमनी के बन एगो मासिन किनब से,
2: हाँ
1: हाँ तब बोलूम बोला चल किनब से एगो मासिन, तब जब मसिनवा किनी फोमे पा तो सिलमा एगो मासिन प्रीमियर मासिन में हम डिफीट कर ले रही,
2: हाँ हाँ
1: डिफीट कर ले रही, वो मासिनवा प्रीमियर जुए में टूट गया रहा।
2: ओहो,
1: हाँ सिलमा नहीं देखो गाजली,
2: हाँ
1: नहीं देखो गाजली, मैं गाजली के गली तो उन्हें आपसे चल बाजे फिर से के रिपेयर करके देगी, हाँ तब हम जाके दूसरा कहते मासिन के लिए गली मगाजा मामूत में,
2: हाँ हाँ
1: गली कलाचान में, तो दिखा थी लोग के जो मासिन बाटे छोटा बा, हाँ समझ जो कर बोल बा ज्यादा बरियार बा,
2: हाली से पीसा,
1: हाली से पीसा, तब एगो अनली आगे कलाचान लगे के,
2: हाँ
1: जब अनली जब पिसली तो हमारा हम बुलुम के बात है बुलुम हौ मसीन में ना उड़िया देव तलक सब हवाई सर फैला दे कैसे जोली खाजे कले बा फै,
2: हाँ
1: फै खाजे कले बा, बस के जब एगो मसाला कुछ खाजे कर बा,
2: हाँ
1: नहीं तामी नहीं कर बा वो मोटा मोटा उसने भर दे
2: जाएगा,
1: धल तो हर काम चौपट हो गया,
2: हाँ
1: की लेवा तोरा नहीं खुशी रही,
2: हाँ सच
1: बोली वो कर चीज मोटे मोटे बा, जब वो पकावा था अंग्रेन अंग्रेन रहा था,
2: हाँ
1: नहीं अच्छा बा, जब जब भाई देख ली है मशीनवा फेंक हाजे करा था तो हमने को गई बाप जाके चार गो मासिन अन्नी सा काला चान लगे से,
2: हाँ हाँ
1: कोसो लगे से तीन गो मासिन ले ली, तब भी ने हम मशीन वन सेवी करी ला, मैं प्रॉब्लम वाला खाली जब पिसते पिसते मशीन वन के लाम
2: और जब तू पहला जौता से जब पीसत रह चाची तो कितना घंटा लगे एगो, एगो मतलब जे पीस पीसे करे या हाई जो सतुआ ओकरा खाजे करे के कितना लेता लेवे
1: लेता लेवे पस के उ तनी तनी खाजे करी तामीने करब फिर से ओकर में डलब, हाँ सिलमा मशीनों में जल्दी से हो जाला, हाँ जल्दी से हो जाला, तब भैया थी ऐसे करते करते आगे भी हुई ली सर।

0: तब बुलुम के कुकाज मिले लगा।
1: हाँ, पस की पहला हाँ? भला जब जब एगो ऐसन एगो अड़चन चलावेला हाँ? एगो ऐसन परिस्थिति चलावेला ढेर मैडम लोग हम समझत हई ढेर कोई जो खासकर अपन व्यवसाय अपन एगो काम करत हवा अपन एगो बिजनेस करत हवा
0: हाँ?
1: जब एगो मान ला एगो ऐसन अड़चन चला रहे एगो ऐसन परिस्थिति चलाल
0: हाँ?
1: तो देखुकाजे हो जाला।
0: नहीं हम तो हयम जाने ला हमने देखुकाजे ली हमारे संगे ढेर प्रॉब्लम हो हम कब्बो ने हिम्मत हारली आज भी हमने हिम्मत हारी ला हम बेटा लोग के बोली ला हम जब ले हम सकब अपन काम करब
1: हाँ।
0: जब नहीं सकब तब तू लोग करिए सब
1: काहे के हाँ। एगो जब तू दिमाग में डाल देबा कि हाँ। हम कोई के आगे पैसा खातिर हाथ आगे हाँ। नहीं करब
0: नहीं करब
1: और जब हाँ। नीमन से भगवान तोरा बहुत शक्ति देले बा
0: हाँ।
1: और जैसे बोलते है ना नारी शक्ति खोजे के चाहिला
0: हाँ।
1: और आज तू हमनी के संगे जुड़ गल हवा तो चाची पहला है बतावा जैसे जब तू शुरुआत कर ल तो तोरा सरकार देने से कोनो योजना में कोनो तोरा एदे मिले मिलल रहल शुरुआत
0: हाँ?
1: में
0: हाँ?
1: हाँ?
0: आगे रहल BBM भोल बाद DBM
1: हाँ
0: हाँ हई हुआ घर अली हमरा जरूरत पड़ल
1: हाँ?
0: हम बोलूम के बोली अब हमनिक अपन पूजा बा तनी जस्ती बढ़ाप से
1: हाँ?
0: तब गैली BBM तो हमरा बोलक जाए के आगे अपन पापी में जिकाल निकाले के
1: हाँ?
0: तब गैली लेनो अपन दुगो फोटो मंगले रहल हौजो पर 3 दिन कुकर ले रही तब हम वहाँ पापे में जिकाल निकलल जे कोनो माला दुनई बाटे
1: हाँ।
0: तब हुआ एगो पापे दे तू हर बड़ी सही पापे बा चाना डुबले कराए के
1: एगो रेनुवले कराए के अच्छा
0: आई तब हुआ से तब अब गईली अपन कोड बिजनेस निकलाई
1: अच्छा
0: हाँ हे देखा बाटे
1: हाँ हाँ
0: बिजनेस हे देखा
1: हाँ हाँ
0: हाई
1: चाची है जब पर सब अपन से एचपी का अनले हवन और बहुत खुशी से हमने के बतियाई लन
0: हमार सब कुलिक कर रहा
1: हाँ हाँ
0: और हमार से एचपी का बा
1: हाँ
0: सब चाहेला कहूँ जाइबा एगो इस पे ते तोरा हाँ, रिते करी
1: हाँ,
0: तोहर सब बाटे
1: हाँ,
0: तोहरा कोनो प्रॉब्लम नहीं दिखाई
1: के चाहिला
0: दिखाई के
1: कि तू लीगल से है हाँ, सब काम कर रहा
0: है सब काम करीला
1: हाँ,
0: और कोई महिला रही
1: हाँ,
0: वो बोली कैसे कम्मा शुरू करी
1: हाँ,
0: कहाँ जायो के है सीमा मिली
1: हाँ,
0: कौन कागज चाहेला तो है सब रही तोरा एगो प्रॉब्लम नहीं हुई खाली तोरा चाहना एगो पेशेंस रखी के
1: हाँ
0: जाके हम कु कर ली
1: हाँ,
0: सुबेदार बगल रहल बगल से मैडम लोग के सभा निकलल बाटे जे जोन जोन मैडम एते कैसे बा हिया गवर्नमेंट बगल से फैसिलिटी मिलता एगो कु मिलता सब अपन एगो काम चलाई सीख लेब हम गईली अपन काम निकाले एगो दिन निकाली काल गईली हौ जा पर तब हुआ हमनी के सर्टिफिका मिलल
1: हाँ।
0: तब आले आले तब अब मिस लुक सोने करलक हई लौंडा में लाफो लगी मैडम लोग के हौ लौंडा में लाफो लगी सिपा 2 दिन के 3 दिन के 4 दिन के ऐसे
1: हाँ, हाँ।
0: लगत रह
1: हाँ, हाँ।
0: तसल मत हो रहा चाहला अपन 4 दिन के या 3 दिन के तैयार कर दे के तैयार कर दे के तोहरा चना बोले कि बोली तोहरा सीते यहाँ चना डूब जाए के
1: हाँ।
0: बस के जाने ला फजीर के बेरा शान के बेरा लाहु तनी ब्लोके
1: रहे हाँ।
0: तो उही से
1: बोने रे चल जाए हाँ।
0: बोने चल जाए के अपन सब चीज तैयार सरिया दे के वहाँ जब तू फोमिया जू हुआ गई ला अपन सब चीज वहाँ सरिया दे ला तो देजियम जू तू हौजे छोड़ के बा वो लोग खर्चा पर उकर गांव जे सब डाले बनाऊं सा तो हर सब चीज वे ये करे के
1: हाँ, मतलब कुछ नहीं कुछ पैर दी नहीं
0: नहीं नहीं पैर दे वही जब दें जू होई तब तो अपन सब चीज उठा के अपन घर आई बा
1: हाँ हाँ तो चाची पहला हला जब तू शुरू कर ले रहा हाँ, तो सगरो 20 में जात रहा
0: हाँ 20 में जाते कुमास में शुरू कर ले
1: हाँ,
0: 20 में हमार छोटा छोटा लड़का लेके
1: लाइकों के संगे और साक उठा
0: हाँ,
1: के
0: साक जिमोस के दिन फ्लैग जब सा
1: हाँ
0: फ्लैग जब सा मलाइका लोग के लेके
1: हाँ
0: वहाँ पर जाके कसार सतवा मसाला सब हम मलाइका लोग ला में दी
1: हाँ
0: तब हम साक में लेके लाखों में भीतरे ढुकब मौसा लोग के संगे संगे तब किनियन सा जब मैं हाली से बेचाई घर जब सा हाँ
1: तो हौजा के तुन अनुभव कैसन रहल
0: बहुत अच्छा रहल जब बोलंग सा चाची मसाला तो मसाला बहुत अच्छा बा
1: हाँ,
0: हाँ। हमने का अपन फैमिली अपन जोन बड़ा दादी लोग बा लोग के याद करी ला
1: हाँ, हाँ।
0: तब भैया ठीक का सरो कुछ नहीं बोलंग सा खूब अच्छा बा दादी हमार खोखी नहीं जात रहा से हम हमार खोखी जगह कितना दुखते देख ली से हम एगो दवाई काम कर देलक दादी कब्बू नहीं भूला सा
1: तोहर कसार को तोहर हाँ। हाँ। जैजाम खा के हाँ, तोहर कसार खा के खोखी
0: चल गल
1: मतलब एक तरह से देखा जाए तो एगो एगो प्राकृतिक मेडिसिन नियर
0: दवाई सर हाँ। हाँ। कसारी हाँ। दवाई सर तब हाई

0: से करते करते अब बोली सकता है ना मगाजें मगाजें जाप सा
1: हाँ.
0: तब सच्चे के एक दिन साक लेके थोड़ा थोड़ा भर के गुडलैंड मगाजें सगरे थोड़ा थोड़ा गैली सा तब दूसरा दिन फिर से हमने के फोन आल
1: हाँ.
0: तब फोन नहीं हल तब तब सब कोई बोलंग सा चाचे गो नंबर चाहे आप दूर
1: हाँ, हाँ.
0: तब हम अब हम पति के बोली अब चाहे गो पोता की ना के बस के सकब क्लियर लोग के
1: जब अच्छा लगी तो
0: कैसे कॉन्टैक्ट करें तब बोला कच्चा वह गैली से जाके पोता वो किनाल निमोगो डाला गल तब चिकेट कर ली सा
1: हाँ.
0: फिर खादी खाता में चिकेट बैठे
1: हाँ, हाँ.
0: हमारा नंबर सब बाटे
1: हाँ, हाँ.
0: ओकर दाते स्पेकेशन बा
1: हाँ, हाँ.
0: ओकर ओकर पुआ बाटे कर
1: हाँ,
0: में
1: हाँ.
0: सब बात तब वहाँ सब दे ली सा तब किलियां लोग सोने करे लगा
1: हाँ.
0: सोने कर लंग सा
1: हाँ, हाँ.
0: हई बेरा पारे कर दे के हई दिन के पारे कर दे के इतना कसार इतना मसाला सा
1: और जैसे मान लो कोई तोरा ढेर बड़का को मान देवा था तो ओकर खातिर भी तू ऐसे पारे करे लन सा
0: हाँ पारे करीला सोचने हाँ. से न ज्यादा तना तनी लापेन करे के जस्ती
1: हाँ, हाँ.
0: तब तार देले सुता तली सा रात के इन्हें हो जाता हल फजीर के देजे हो जाता हल
1: हाँ. तोहर काम घरे घरे करेला कि कोनो जगह बा हौजा काम करेला सर
0: नहीं जोन तैयार करीला सर
1: हाँ.
0: उस सब अपन घर पर अपन हाथ से करीला सर
1: अच्छा.
0: आर जोन बेचे के रहेला
1: हाँ.
0: तो हई तेरूज में जहाँ हम रहीला
1: हाँ.
0: गुलाब चिक्के वाल बा
1: अच्छा.
0: हौजा पर बेचीला जब लाफो नहीं जाला था हुआ पर किलियो बा आर हई फ्लैग जाला जुमोस के दिन गुडलैंड जब फोन लगावे लंग सा जाला लोग के छोड़े आर शहरों में जब मैडम लोग जोन काम करे ला लेते नहीं मिलेला
1: हाँ.
0: वो लोग एगो धला एगो घूप कर ले
1: हाँ. सबके को मनवा इतना हाँ. इतना चीज हाँ. तू आन दिया हाँ.
0: इतना को मनवा पारे कर देला
1: हाँ.
0: आन दिया है दिन के
1: हाँ.
0: बे हमने बिया भी जैसा है ये दिन का नहीं है
1: हाँ.
0: तब लेके चल रहा
1: हाँ.
0: तब वाकवा बाजों में चल रहा आर मगाजें हुआ वाकवा में
1: हाँ.
0: हाँ. वो बगल चल रहा सतनी
1: हाँ.
0: तब ऐसे करते करते हमने के कोमान बरलेगर बरलेगर बरलेगर
1: चाची अभी जब हम प्रोग्राम शुरू करे के अगाड़ी
0: हाँ.
1: जब बात करत रही
0: हाँ.
1: तू बोले तू आचार आचार भी तैयार करे
0: हाँ, हाँ.
1: आचार भी बनावेला
0: हाँ.
1: तो कौन कौन आचार तू बनावेला
0: देखा आचार सब फ्री के जून मिलेला हमने को कर आचार सकब सब बना देवे
1: अच्छा एगो एग्जाम्प दिया था
0: कैसे आम बाटे
1: हाँ.
0: आम के कुचा बा अमरा बा आमला बा अमराओ के कुचा डालीला सा कहाँ बोल कालांदा लहसुन प्याज के भी लहसुन अचार डाला पोम कारोद
1: हाँ.
0: कैसे कोई नहीं सकेला नहीं जाना थो पाचिसों कारोद और रुजेत
1: ओकर भी
0: हाँ ओकर वो बहुत स्वाद देवेला
1: सच्चे
0: हाँ सेलमा ओकर वो चाहना जल्दी से ओके इस्तेमाल कर दे
1: मतलब ढेर दिन नहीं रखे
0: ढेर दिन नहीं रही
1: को मजा वो मान लो 10 दिन या
0: हाँ.
1: 2 हफ्ता ले
0: हाँ.
1: उतना दिन में
0: खत्म कर मस्त हवा बहुत अच्छा
1: सच्चे के मस्त जैसे तू बोला था हवा हम तो अब तक बुझाता है तो हर खात के स्वाद चखे खातिर मजे एगो आसार अचार बोलब तोहरा बनावे के तू हमने के बोले रहल एगो मगोज के
0: मगोज करेला
1: के
0: करेलवो के अचार हाँ वो डालीला सा
1: हाँ
0: कौन बोल वो की डाला
1: हाँ सुन ले हाँ अचार
0: नहीं हाँ अचार डालीला सा हमने अचार घमा में सुखा के आम ही सर
1: हाँ
0: कैसे आम सब हमने धो के फार के सब साले करके
1: हाँ
0: कैसे गरम रहेला घमा ढेर कस के रहेला
1: हाँ
0: सब चीजों के घमा में सुखाएला सा
1: अच्छा.
0: हम अपन एक बरिस के आम एक बरिस के लोग बिलाए भी
1: हाँ.
0: सुखा के ओके पैकिंग करके हमार फ्रिजिडिया बाउकर में रखीला एक बरिस सब कोई बोलेला आम नहीं बा पिलाई भी नहीं बा कहाँ से तोरा मिलल तो हम अपन सब सुखा के प्रिकॉशन ले के रखीला
1: अच्छा.
0: जब एगो लेपो कावेला तनि अचार कम बेचाला
1: हाँ
0: हाँ. अरे एगो लेपो कावेला अचार ज्यादा बेचाला
1: जस्ती बेचाला
0: हाँ, जस्ती बेचाला है चाहना कोई के
1: हाँ.
0: बस ओकर दिन है अचार बेचाए के कहते हैं मसाला बेचाए के ओकर दिन है
1: हाँ.
0: कैसे गरम
1: सीजन रहेला
0: हाँ एगो सीजन
1: रहेला
0: बस के जैसे गरम में मसाला तनि कम
1: कम बेचाला बस की उतना कोई नहीं की नेलन ठंडा जब
0: दब जाला
1: जस्ती जाला
0: हाँ, जस्ती जाला
1: हाँ.
0: बस के ठंडा व अदमिया तनी जेपीस खाई
1: खोजे
0: लंसा हाँ चरवो
1: हाँ
0: हाँ खाई खोजे लंसा
1: हाँ
0: आर है मजा बाहु वो तैयार करी ला
1: सलमो हाँ. उल्टा बा
0: हाँ.
1: कि गरम में तोरा है सब खुईवा मिली
0: हाँ.
1: सलमो ठंडा में नहीं मिली,
0: मिली।
1: तो चाहिला एगो तैयारी कर
0: दे तैयारी करके अपन लावांस रखे के जब तोरा काम लगी एगो किलिया तोरा फोन लगेला चाची हमके है चीज के जासा चला इतना है चीज के जासा चला इतना तब तोरा तू सकबा बोले हम अपन कौन से अवे करके रख ले है
1: हाँ.
0: सकबा बोले हाँ मोपुफिनी पे पॉली
1: हाँ जैसे बातें
0: बातें
1: को मजा कबो क्लियो के मना नहीं करे
0: मना नहीं करे के
1: हाँ, हाँ.
0: तो अपन प्रिकॉशन लेके रख ले हवा
1: हाँ, हाँ.
0: अब तू अपन जेपीस तैयार कर हम अपन जेपीस सब हम अपन रोज काहे के उस कागी के

0: जेपीस मुतर सब खाजे करके हम हौ से अचार तैयार कर ले है।
1: अच्छा
0: उ अचार हमर दादी रहता और हमर दादी के बहिन गोसनुआ रहता
1: हाँ।
0: उ भी नहीं बा हमर बीच ओकर अचार खइबा त सुखल भात से
1: हाँ।
0: हम अचार खइबा
1: हां देर हाँ। को खुशी रहेला हाँ? घी भात खाए के
0: हाँ।
1: और भात में तनी घी मौते के बाद डाल के तनी आशो से सान के उही खा के
0: तो उ अचार

0: बोले ला दस ही दिन में पहुंची दिन में अचार खराब हो गल गाते हो गल
1: हाँ,
0: हाँ. नहीं उसे नहीं है हमने के अचार आम के अचार सब बस दुओ बरिस रखे
1: गाते नहीं हो
0: नहीं गाते हो बस के सुखावल बा
1: हाँ.
0: पहले कैसे रहल दादी लोग पोचिस में
1: हाँ, हाँ.
0: अचार भर के रखा
1: हाँ, बड़का बड़का
0: बड़का बड़का पोचिस में
1: हाँ.
0: तभी तो नहीं लौके ला पोचिस
1: हाँ.
0: अब तो पड़े ला पो इस्तेमाल कर
1: और उतना बड़ा नहीं मिलेगा छोटा छोटा पो मिलेगा उतना में कितना तू बड़ा बना के रख सकता
0: तब सिलमा पोमे को मौसम जब जास अचार हम बेचे लगली तो हम सासे में डाल तली ऐसा जासे में
1: हाँ, हाँ.
0: तो हमरा अनुभव नहीं रहा नहीं लिस्ट भी मिला था पो कहाँ बेचाए कहाँ
1: कहाँ से किने के कैसे से ढूंढे
0: हाँ.
1: के हाँ
0: जब आई कु जब ले लगली जब कु ले लगली तब बोलंग सा है जा पो मिली हाउ जा हाउ मिली हाउ जा छाना चिकेट बनाए के हाउ जा तब अपन गत्ते गत्ते सब सब अपन चिके
1: डेवलपे होवे लागल
0: हां हां
1: हां त चाची तरह जस्ती सबसे जस्ती कौन अचार के कोमान जस्ती मिलेला
0: है आम के
1: हां
0: कुचा मांग
1: हां
0: आर बिलेबी के
1: हां
0: करैला के आर लहसुन के
1: अच्छा
0: आर नींबूओ के मिलेला
1: अच्छा लीमो के भी मिलेला
0: हां लीमो को मिलेला
1: हां त लीमो के कौन कालीते कितना कालीते के तू बनावे
0: है नीमोवा के गो नीमो ए गड्डू करीला आर एक वाइस ने नॉर्मल जैसे सब जासों मांग रहेला उसने करीला सब
1: हाँ. चला एगो गीत के ब्रेक ले वापस और आवापस उड़ान की कहानी में एक बार फिर उसे

0: की कहानी उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सुनीता कनौत और हम आपको ये भी बताते चले कि जो भी तैयारी होती है वो बहुत ही प्राचीन पद्धति से वे बनाती हैं। प्राचीन पद्धति यानी आज भी वे हाथ से पीसकर सारे मसाले तैयार करती हैं जो आसान काम नहीं होता। चला जानब सर श्रीमती सुनीता जी से। चाची जब तू अचार बनावेला देखा आज तक ढेर कोई अचार के बिजनेस शुरू कर ले हवन और ढेर नवीनीकरण चलाल बा। नवीनीकरण मतलब जैसे बोलल जाला कि ढेर कोई अभी डिहाइड्रेट करे खातिर बड़का बड़का मशीन किने लंस जैसे सुखावे जैसे तू बोलत हवा बी लैम्बी अचार के और आम उ सुखाए खातिर उ ऐसन बड़का बड़का मशीन के प्रयोग करे लंस त तू भी ऐसन ऐसन नवीनीकरण के संगे करत हवा कि कैसे तू अचार तैयार करे लंस?
1: नहीं हम मशीन कोनो नहीं सेवी करिला।
0: अच्छा मतलब जैसे पहले नानी दादी बनावे उसने
1: लोग वो लोग घामा में सुखा के अपन हाथ से जे पीस पीस के डाला तलंग सा हम वो भी आज तक इस्तेमाल करीला।
0: हवे से तोहर जस्ती कुमाजा कैसे स्वाद लगे?
1: स्वाद लगी और जब एगो जेन छोकरा या एन जेन छोकरिया आवेला तो लगे जब कि ने तो डिजायर लेके सेवी कर ले लो फिर से तोहर लग गया तब बोली दादी चाची नानी कुछ भी बोलियन सा बे को तू नौफान सा दादी बे तब हम बोला बेटा मु नौफान आवेक मु बान घर पा हाँ तब बोलिए मु माजिन मु दादी सिपा मु नानी पागे दादी पागे सलामान
0: कर वही स्वाद। हाँ वही स्वाद से
1: जब ना सब बिया बनु बिया को तब आई अयन सा कोनो छोकरी हबी फेक शादी कर लेवा वो लोग पकाई नहीं जाने ला वो लोग बोली जस्ती मीन मकाओ निकाला तब बे ऐसा बुपा को लिया वो एक्सप्लिक मा कुमो मो बिजा फ्रिकास सबन काई ला तब बोला पोलोक से तेल डालिया काई में हाई सैंक एपीस
0: है हाई ये पूछे के रहल चाची हाई जोन चीज रखल बा हाई में तो मेलांस बुझाता कौन कौन चीज मेलांस कर लेवा?
1: यही बोला जला कारी सुरों।
0: अच्छा
1: हाँ कारी सुरों
0: हाँ ये के बोला जला कारी सुरों
1: हाँ एकर में मेथी बा मुतोद बा चिमुतोद रूज गोलानी बा चिलानी बा दालोरिद बा।
0: अच्छा
1: पांच गो बा पांच गो जेपी बा
0: हाई में कैसे एगो तेल तेल डाल के तू जब कोनो सब्जी कोनो तरकारी छौंकत हवा तो हाई तनिसन डाल दे के
1: हाँ कोनो तरकारी लेगीम सुसु भाजी सब में मार ज्यादा से ज्यादा मसाला के तरकारी में इस्तेमाल करे लंगस तब जब तेलवा डल गरम हो के एगो छिकुया जो प्लेकर में डाल के रखबा ओकर तेलवा में डाल लेबा।
0: अच्छा
1: तनी सुना भून जाए अपन काही पुले जीते डाल देबा तब अपन प्याज डाल
0: मतलब कुमाजा ओकर जो गाशो हा जैसे कैसे बोलबा उकर जोन मिजिया हा उकर निमन से तू मेलांजे करके तू बेचा था वा तू देवा था वा हाँ तो हाई जस्ती फासिल हो जाला
1: जस्ती फासिल हो जाला
0: पॉस के अभी मान ला अभी तू दस पांच गो जेपीस के पांच गो अलग पो में रखबा और हाई जोन हा तू मेलांजे करके तू देवा था वा तो जस्ती जस्ती फासिल हा फासिल हा
1: तब भाई यथी कर लेबा हाई से तकारी अपन फोड़न लगा देबा तब तू अपन मसाला देखा मसाला बाटे
0: और हाई में कौन कौन कौन कौन मेलांज
1: एकर में सब मेलांस बाटे ओकर चिलानी से ओकर लाइची सब सेल में गो बात पर बोलत है कोई लाइची खुशला खाई के जेगो खुशला खाई के कोई नहीं वो मसाला तैयार करीला सा
0: जैसे
1: कैसे तू बोलबा
0: जैसे कस्टमाइज करे के मान ला हम बोलब तोरा हाई हाई जेपीस नहीं डालिया तो तू ऐसे पारी करके देबा
1: पारी करब सा ज्यादा से ज्यादा लोग हमें पर कॉन्फिडेंस करेला हाई ये मसाला नहीं उठा के देब सा
0: मतलब जो जो नॉर्मल मसाला रहेला ओकर में तनी गरम मसाला भी तू आजूते कर ले मान ला जेगोफ है लाइची है कानेल
1: है। अच्छा हां ओकर में पत्ता तेजपत्ता सब रहेला
0: हां
1: सब तैयार डाल के तैयार कर दिला सा तब अब तू छोंक लगेबा अपन पुमनामू लाइजाजाम डाल के तब एक छोंक लगेबा तनी सुन पानी

0: चना डाले कि तने सुन पकी हाँ। जमे लाकुल नहीं करी मसाला
1: हाँ।
0: आरी ढेर मसाला हुआ नहीं डाला
1: और इसमें हरदी हाँ। डाल लाहो से डाले
0: नहीं नहीं खाई में नहीं सको बदहर पास क्या ये जहाँ हाँ, पके लाता फोंसे हो जाला
1: अच्छा मतलब इसमें हाँ। देजा बातें
0: हाँ देजा
1: बातें हाँ, तो मतलब बाते। मतलब कुछ नहीं आजूते करेंगे और जैसे तू बोले हुआ एगो मसाला बा बिना पीमा के और एगो मसाला बा पीमा वाला
0: और एगो स्पेशल इसका हो
1: अच्छा मतलब स्पेशल में कौन चीज
0: पीमा ज्यादा बा ओकर में
1: अच्छा हाँ। मतलब हाँ। जो ढेर तीतर
0: पीमा खाला स्पेशल बोल हाँ। चाची स्पेशल क्या पे स्पेशल
1: हाँ।
0: तो उन मसाला तने लाल रहेला
1: अच्छा मतलब उसमें में पीमा हाँ। के जो मात्रा हा हाँ, तने जस्ती हाँ। तो मतलब हाई भी एगो जाना था आज के समय में
0: हाँ।
1: बहुत कम लोग खुशी बहुत कम लोग जाके मतलब मसाला ढेर हाँ। कोई खुशी रहेलन जो हाथ से पिसल मसाला हा वो किन के वो ऐसे पकाई के और जैसे चाची बोला था वन कि पहला के जमाना में दादी नानी लोग घरे रहत रहलन और घर पे मसाला तैयार करत रहलन हाथ से मसाला पीसे सफा से नीमन से अपन हाथ से और उही खातिन एगो स्वाद काहे काहे बोलल जाला कि एगो तरकारी काहे उतना स्वाद लगता काहे कि उमे एगो पर्सनल टच चलावे काहे कि अपन हाथ से तू पकावत हव अपन हाथ से मसाला पिसले हव तो उही खातिर और आज कैसे कमर्शलाइज हो गल हवन सब कोई बहुत हाल ही से दुनिया बहुत हाल ही से तेजी हाँ। से आगे बढ़ता हवे से कोई के लेता नहीं बा
0: लेता नहीं
1: एगो हाँ। मसाला पीसे के घरे हाँ। तो उही खातिर जैसे आज भी बहुत नानी दादी लोग खुशी रहेलन और जैसे चाची सुनीता हवन आज के समय में इतना तकलीफ के साथ वो हाथ से मसाला पीसेलन वो पैकिंग करेलन और साथ साथ चाची तू बोले बोलबा के तोरा एदे करेला पैकिंग करे खातिर
0: पैकिंग करे खातिर अभी भाई पचीर हल तो लामे देवत रहा
1: हाँ, हाँ,
0: हमार आरे गो बेटा बाटे
1: हाँ,
0: वो लामे देवी
1: हाँ,
0: तब अभी हमार आरे गो बेटा बाटे
1: हाँ,
0: वो पैकिंग करेला हमार दुगो पोती बा
1: हाँ, नाम ले ला तनी
0: हाँ, काश्याना
1: हाँ,
0: उ सीजीएम कराता है
1: हाँ,
0: जब लोग काजो मिले ला तो हमरा लामे देवला पैकिंग कर हई पैकिंग करे के
1: खातिर
0: आर जे कोनो पो में चीज रहला भरे के कैसे टक्कर पकाइला सा
1: हाँ,
0: टक्कर के भी को मान मिलेला
1: हाँ,
0: शादी के पूजा के ऐसे बेचीला सा
1: हई हाँ, हाँ,
0: कोई बिरयानी उ संगे खाई के तो उ पो में भर को कर चिके डाल देला हाँ,
1: और तू तो अभी दो गो नाती के बोलला तो एक के गो नाती के नाम
0: एगो पुरवी
1: हां
0: 8 साल के बाटे और काश्याना बाटे 12 साल के
1: तो काश्याना और पुरवी दोनों आज अपन दादी संगे आल हवन और इतना खुशी हवन अपन दादी के टेलीविजन में देखे खातिर सच है कि एगो गर्व के बात है काहे के हई उम्र में भी आप बहुत हिम्मत से बहुत मेहनत से आगे काम करत हवा और एगो प्रेरणा देवत हवा उन सब महिला लोग के जे कुछो करे खातिर आगे बढ़े खातिन एगो सीमा खोजत हवन एगो प्रेरणा खोजत हवन तो चाची एक के गो बात पूछब
0: हाँ।
1: आत्मनिर्भर होवे के कितना जरूरी है
0: बहुत जरूरी है चला अपन पर कॉन्फिडेंस रखे के और चला कुराज रखे के जब तू तो एगो काम शुरू कर ला हुआ एगो बुत करके बोलबा कम्मा नहीं चलाता जे नहीं नहीं हम आगे ते है जी नहीं चलो के आगे चलाए के जब ले तू सब कम्मा चलाव
1: हाँ।
0: जब जो हर मासौजी से अच्छा बा तो तोरा कोनो तरह का से नहीं करे के चाहे
1: हाँ, हाँ।
0: उ तोरा किलियों में आई तोरा खोजी
1: हाँ, मतलब ओकर हाँ। में तनी धीरज रखे
0: हाँ, धीरज रखे बहुत धीरज चला
1: हाँ, हाँ। हाँ,
0: देखो आजे कब नहीं हुई
1: के काहे के ढेर हाँ। कोई ढेर कोई जब अपन व्यवसाय शुरू हाँ। करे तो हाँ। कैसे कमवा जब आगे नहीं बढ़ता क्लियो हाँ। नहीं मिलाता कमवा हाँ। के कोई नहीं जाना था कोई नहीं
0: हाँ।
1: चीना था तो देखो गाजे हो जाला
0: हाँ, हाँ।
1: हाँ, तो कमवा बीच में छोड़े ला, हाँ। छोड़ दे बेलन
0: छोड़ दे बेलन हम बोले ला नहीं छोड़े के काम जब एगो काम करब वो गिर के उठे के
1: हाँ।
0: फिर से उठ के फिर से गिरब
1: हाँ। और हाँ। ये सीखे के
0: हाँ। ये सीखे के हाइये हाँ। निकल एग्जाम है
1: हाँ। और हाइये हाँ। में जाने के कि जाने कहे गिरा था
0: हाँ। कोनो कहाँ कोनो इगया बा कहाँ कोनो भूल चुको गलो ऐसा सीता को
1: ओकरा तू को रिजे करके फिर से शुरू कर दिया
0: हे रे का मसाला बोला थे ऐसा रोस्कारी के हे रे का मसाला बा रोस्कारी के हाइ हम निक पीसी ला सा हाइ पीसी ला सा सेल में के तोरा चला फ्रिजिडे में रखे के आ तू नहीं सेवी करवाता
1: हाँ उगाते हो जाए
0: हाइ ऐसे गाते हो जाए जब फ्रिजिडे में नहीं
1: तो मतलब एगो रिस्क ले के चाहिए
0: एगो रिस्क आना
1: ले के नहीं ले बस तो तोहर काम आगे नहीं बढ़े
0: तब अब किलियां लोग बोली चाची मसाला होस्कारी बे खाल मसाला होस्कारी से कि लोग तो फ्रे सा मैंने पुनु तब सच्चे के शुरू कर ली सच्चे के सिलवा भगवान के कृपा से हाँ किलियां लोग के कृपा से भगवान का
1: निमन से बढ़ा लागे। और आज के कार्यक्रम में सचे के चाची आज जो भी चीजें लेकर आई हैं सारी चीजें उन्होंने हाथों से तैयार की है, हाथों से पैकिंग की है। और

0: जैसे उन्होंने बताया उनके बेटों ने, उनकी नाती ने उनको बहुत, उनकी जो दो नातिन हैं उन्होंने उनको हेल्प किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो चाची आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमार जितना महिला लोग कार्यक्रम के देखत हवन, कुछ हाँ। करे खोजत हवन, उनका तू कौन मैसेज देब?
1: हम लोग के है ये मैसेज देव, अब जब तू ठान लेबे गो बिजनेस करे के तो उकर के निभा, जब एगो बिजनेस करत हो तो फासिल नहीं है, तनी डिफिसिल पर हबी तनी डिफिसिल वो हो गल बा, तू सब लागे अपन पापे मेजिकल निकलिया, तब अपन पे है पापे बिजनेस निकलिया, तब जब अपन पीएमई निकाले, अपन पीएमई निकाल के अब तोहरा जे लोन के जरूरत बा, हम 3,00,000 लोन ले है डीबीएम से, 3,00,000 लोन ले है सिलमा खाली दे तनी प्रॉब्लम बोलो मला डो गल था समय सब को गल, हाँ जब लोन मिलल तो अब तोहरा बोली जब लोनवा ले तो कौन चीज करब, कौन काम शुरू करवा, तब तोहर कोनो पापे बा कोनो कोताशियों बाटे जे इतना जेपिस किने के बा इतना माते यो किने के बाटे, जहाँ तू आप बीचे होबा जहाँ से ले लो तुआ हुआ जाके ओके बोलबा जे हमरा इतना ये गो रेसी चला इतना चीज किनत एगो कोताशियों जाके वहाँ प्रेजेंटे कर हमरा लोन मिली, तब जो हो पापे वाले के जेबा इतना वाले के तब तोहरा लोन दे,
0: तब तोहरा मिली उतना पैसा काम शुरू करे के,
1: काम शुरू करे के तब तू हर महीना अपन पे ये करबा।
0: तो आज के कार्यक्रम के समाप्ति ले चलाई नहीं सर, चाची जाइते जाइते कोई लोग के तू शुक्रिया अदा करब, कोई लोग के बहुत धन्यवाद बोलब?
1: हाँ सब हमार सब जितना किलियों बा धन्यवाद बा, सब लोग क्या के शुक्रिया अदा करब, जब वो लोग नहीं थी तो हम नहीं रह
0: सही के सचे के, काहे के कोनो भी काम करत हवा तब बोला बोला जालन जो भी क्लियो हा उ देवता उ हमर भगवान हा, उ ही हमर भगवान हा,
1: उ नहीं थी तो हमर काम नहीं चली, हमर काम नहीं चली यार, हमर बेटा के उ सोफिया ले जालन, हमर वान कुछ नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं रहा, आज हमर ट्रांसपोर्ट सब बा, हमर बेटा को
0: मतलब जीवन में उतना तू प्रगति करला जहां तू पहला बड़का बड़का साख लेके तू 20 में जाता, आज अपन अपन खुद खुद के
1: ट्रांसपोर्ट है, सब करे के चला ताकत चला हिम्मत, आर कबो नहीं देखो राज के, आर दूसरों के नहीं देखो राज करे के, हाँ बस के जब है कमाई को काम करत हो तू गिर के फिर से संभल जाएगा,
0: सच है कि
1: हाँ गिर के संभल जाएगा, जब देखो राज हो तो आम पाप का पाप ऐसा ई कबो नहीं सकते,
0: हिम्मत हिम्मत चाहिला करे के। और जैसे चाची सुनीता आज इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारती और दूसरों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक, एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल, और आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सशक्त हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ रही हैं। चलिए इसी के साथ चाची सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा, और बिल्कुल हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कविश जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और अविनाश जी हमारे प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शकों ने इस वक्त फेसबुक पेज पर फॉलो किया, जितने भी श्रोताओं ने रेडियो के माध्यम से हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नई उड़ान की कहानी को लेकर, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्ते, नमस्ते।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि बानू दत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया था। सरकारी नेता आज राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या पर आधारित था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थाई आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम कानूनी सलाह मशवरा करने के बाद उठाया गया। प्रधानमंत्री ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची भी सदन में पेश की। साथ ही जनवरी और फरवरी 2026 में जिन भर्ती कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गई उनकी संख्या पर भी उन्होंने जानकारियाँ दी। रविवार रात को कोंतोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में रखा है। इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा। रविवार रात को कोंतोरेल में 2 टोलियों के बीच बहस शुरू हुई। इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया। गोली की आवाज़ सुनाई दी, 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली। मेविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। वे 26 साल के थे, हसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी जो हमेशा मेहनत से काम करते थे। हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस दुखद घटना की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों और टिप्पणियों की जानकारी ली है। ये बातें न तो बुनियादी हैं और न ही सही, और इससे परिवार तथा सहयोगियों को ज़्यादा खेद पहुंच रहा है। जनता से अनुरोध है कि शोकग्रस्त परिवार की गरिमा का सम्मान करें। एमबीसी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, डराने, धमकाने या अनुचित व्यवहार के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है और इस मामले से निपटने के लिए प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं। इस कठिन समय में संस्था की तत्काल प्राथमिकता सगे संबंधियों और प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना है। एमबीसी सभी से करुणा, संयम और सम्मान बनाए कर रखने की अपील करती है। विदेश में कोंगो गणराज्य में एबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हुई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं जिसके लिए एक बृहद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। उधर युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Center 95.

19 मई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं और जितने भी दर्शक MBC के चैनल 3 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का भी स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में आपका साथ देने के लिए। आपको याद दिला दें जो कार्यक्रम है इस समय रेडियो मॉरिशस पर चल रहा है, साथ ही MBC के चैनल 3 पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। साथ ही इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी हो रहा है। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये भी याद दिला दें इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप आज ही सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे, साथ ही इसे आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर सपहर के 4 बजे। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस महीने की 16 तारीख को यानी कि 16 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि साथ मिलकर शांति से जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर। और आज के समय में शांति से जीना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे का सहयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है हमारे जीवन का। आजकल बहुत कुछ हो रहा है पूरे विश्व भर में, कहीं अशांति फैली हुई है, कहीं पर जो है विचारों का मतभेद है, और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जब ऐसे दिन आते हैं यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में हम शांति से अपने जीवन को व्यापन

एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है हमारे जीवन का। आजकल बहुत कुछ हो रहा है पूरे विश्व भर में, कहीं अशांति फैली हुई है, कहीं पर जो है विचारों का मतभेद है, और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जब ऐसे दिन आते हैं, यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में हम शांति से अपने जीवन को व्यापन

0: कई में हम शांति से अपने जीवन को व्यापन,
1: बुद्ध निकले थे, कभी महावीर निकले थे, और जब हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब शांति की बात करते हैं तो उसका सीधा सा संबंध आपसी प्रेम भाव, मानवता की स्थापना करना, आर्थिक समानता को बढ़ावा देना और स्त्री पुरुष संबंधों के बीच एक सामंजस्य पैदा करना भी होता है। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी हम सभी को केवल एक समाज या परिवार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति के साथ हमें जीना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यह जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कई बार हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं और हम यह नहीं सोचते कि जितना जीने का अधिकार मुझे है या हमें है उतना ही अन्य लोगों को भी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं
0: जी,
1: इन्होंने 2017 में यह निर्णय लिया कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 16 मई के दिन को हम एक लोगों के बीच जागरूक पैदा करने के लिए एक ऐसा दिवस मनाएंगे जिससे लोगों को एक सकारात्मक संदेश जाए कि हमें मिलकर रहना है। दूसरी बात यह है कि 2018 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जब कोविड 2020 में हम इस महामारी से गुजर रहे थे, तो पहली बार जब पूरे विश्व की जो मानव की जो सभ्यता है वो खतरे में थी और हमने यह महसूस किया कि जो दवाई है या जो भी आविष्कार हैं या जो वैक्सीन है वह सभी के लिए है और यह मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सभी देशों को मौका दिया गया कि आप अपनी सीमाओं को, अपनी देश की सीमाओं को त्याग कर पूरे विश्व के बारे में सोचें
0: जी।
1: तो कहीं न कहीं इसका जो उद्देश्य है वह बहुत ही व्यापक है और उस व्यापकता को एक अर्थपूर्ण तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जियो और जीने दो, पूरे विश्व में खुद भी अपने देश का सम्मान करें और बाहर के जो देश हैं उनका भी सम्मान करें और वहाँ रहने वाले नागरिकों के बारे में भी हम सोचें। यानी कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, समाज होते हुए अपने देश के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचे, यही इस दिवस का उद्देश्य है।
0: जी, जैसे आपने कहा कि जियो और जीने दो, सुनने में ये बहुत ही छोटा लगता है लेकिन अपने आप में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जो है एक उद्देश्य छुपा है, एक बहुत ही डीप मीनिंग है इसके पीछे। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं तब तक हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो नज़रिया है वो औरों के जीवन पर भी पड़ता है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं जहाँ पर माता पिता है, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं और परिवार में भी शांति से जीना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा होता है। क्योंकि अगर मन की शांति चाहते हैं तो जिस भी चीज़ की हमें इच्छा होती है या चाहत होती है उसकी शुरुआत हमारे भीतर से होती है, फिर वो हमारे परिवार तक जाती है, फिर वो हमारे समाज, हमारे देश और विश्व तक पहुंचती है। तो यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में ही उस शांति को महसूस नहीं करता है तो शायद फिर समाज में भी वो उसका जो है मन का जो कहते हैं मन जिस तरह से विचलित होता है, मन शांत नहीं है और मन शांत नहीं होता है तो हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो परिवार के स्तर पर यदि हम शांति की बात करते हैं तो कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं कि आपसी मतभेद कम हो और कहीं ना कहीं परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान हो, क्योंकि समय के साथ हम देख रहे हैं कि परिवार में दूरियां बढ़ते जा रही है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पारिवारिक स्तर पर भी है।
1: बिल्कुल, देखिए स्वभाव से

0: कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है। केवल मनुष्य नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जीव जंतु जो हैं वे भी सामाजिक होते हैं
1: जी।
0: और उसी से इस सृष्टि का जो एक संचालन है वो चलता रहता है। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में एक आपसी मतभेद हो, लड़ाई हो, भाईचारा नहीं हो या किसी भी तरह का मन मुटाव हो तो वह एक परिवार जैसी संस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले परिवार के अंदर एक संवाद की भूमिका होनी चाहिए। यदि हम संवाद, आपसी संवाद और अभिव्यक्ति नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है
1: जी।
0: दूसरा है कि आपस में एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना। हम यह उम्मीद ना करें कि दूसरा जो है केवल त्याग करे और हम त्याग नहीं करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे परिवार के बीच लोभ लालच ना आए। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी तो वहाँ हैं ही, बच्चे भी हैं
1: जी।
0: लेकिन साथ साथ जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग लोग हैं
1: जी।
0: वे सभी हैं। और जब आप देखेंगे कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से जब बात करते हैं तो परिवार का मतलब होता है संयुक्त परिवार, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो समाज है वह एक कृषि प्रधान समाज रहा है और कृषि प्रधान समाज में संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसको मैं एक उदाहरण के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक महापुरुष राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आज की पीढ़ी अपने पिता के आदेशों को इस तरह मानने के लिए तैयार है या नहीं है? यह एक बड़ा प्रश्न है। और भ्राता भरत, जिसको राजगद्दी मिलने के बावजूद जिसने राजपद का त्याग किया, क्या उस तरह की त्याग की भावना है
1: आज के समाज में?
0: क्या लक्ष्मण जैसा कोई भाई है जो अपनी सुख शांति त्याग कर अपने बड़े भाई की सेवा में जाने के लिए अग्रसर हो? और ये सारे जो निर्णय हैं रामायण में, जो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर त्याग किया
1: जी,
0: चाहे वो उर्मिला हो
1: जी,
0: उन्होंने त्याग किया
1: जी,
0: एक स्त्री का त्याग है, एक माँ का त्याग है
1: जी।
0: और देखेंगे कि जितने लोग हैं कहीं ना कहीं वो त्याग कर रहे हैं
1: जी।
0: तो परिवार में त्याग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसी से परिवार में एक सामंजस्य पैदा होता है। और जब ये त्याग, स्वार्थ जब किसी भी परिवार से समाप्त हो जाता है तो फिर महाभारत होता है, जिस तरह से दुर्योधन के चरित्र में हम देखते हैं
1: जी।
0: यानी हमारे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि समाज जो है आदर्शों से चलता है। तो हमारे आदर्श कौन हैं? क्या हमारे आदर्श राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, उर्मिला हैं, सीता हैं, या हमारे आदर्श दुर्योधन है, दुशासन है
1: जी।
0: तो हमें यह निर्धारित करना है। जब हम अपना एक आदर्श निर्धारित कर लेते हैं और उन मार्गों पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि स्वतः परिवार में भी शांति होती है, समाज में भी शांति होती है। और जब परिवार मजबूत बनता है तो उससे समाज मजबूत बनता है, और जब समाज मजबूत बनता है तब देश भी मजबूत होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: और जब देश मजबूत होगा तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के बारे में सोच पाएंगे।
1: बिल्कुल, मतलब कि एक कड़ी कहीं ना कहीं दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अभी हमने थोड़ी देर पहले समाज में शांति की बात की, आपने जो है अभी के समय में हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है और हमारी लाइफस्टाइल बदलने के कारण परिवार का जो परिपेक्ष होता था, जैसे कि एक समृद्ध परिवार होता था, अब वो परिवार जो है एक्सटेंडेड परिवार ना होकर न्यूक्लियर परिवार हो गया है ना, मात

0: पिता रहते हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग अलग है, सप्ताह में कभी एक बार या दो बार मौका मिलता है जाकर अपनों से मिलने का, तो इसका गहरा प्रभाव हम हमारे नौजवानों पर बहुत देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बहुत देखते हैं। तो अगर एक नौजवान नव युवतियों की बात करें तो किस तरह से जीवन में वो छोटी छोटी चीज़ें शामिल कर सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में जहाँ पर वो शांति को प्रमोट करें, क्योंकि आजकल नौजवान जो है उनके पास ऑप्शंस काफ़ी है, सोशल मीडिया के चलते काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो किसी भी समय जुड़कर कुछ भी देख रहे हैं और उसका गहरा प्रभाव उन पर पड़ रहा है, और जो कुछ हम देखते हैं ऑब्वियसली उसका असर तो हमारे मानसिक स्तर पर होता ही है, और जो हम ग्रहण करते हैं वही कहीं ना कहीं कर्म के रूप में हमारे भीतर से निकलता है। तो खासकर नौजवानों की बात करें तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान दे सकते हैं ताकि शांति को अपने जीवन में जो है शामिल कर पाए।
1: जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोगों को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं मानसिक शांति चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस मानसिक शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ मैं, जितने भी युवा वर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि मानसिक शांति जो है परीक्षा में केवल अंक प्राप्त करके और उन अंकों के माध्यम से कोई अच्छी नौकरी लेकर नहीं प्राप्त की जा सकती। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो वह मानसिक शांति नहीं है, जब आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो आप इस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत कुछ पा लिए हैं और उससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नहीं, जब हमारे कर्मों से, हमारे कर्तव्यों से, हमारे जो जन्मदाता हैं या जन्मदात्री हैं, जब वे प्रसन्न हैं, जब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न हैं, जब हम वैवाहिक जैसी संस्था में प्रवेश करते हैं तब हमारी पत्नी या हमारे पति हमसे प्रसन्न हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, तभी मानसिक शांति मिलती है।
0: जी,
1: मानसिक शांति का मतलब केवल यह नहीं है कि केवल हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा एक स्वभाव होता है कि जब समाज में कोई हमें एक आदर्श चरित्र के रूप में देखता है और जब वह देखता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत ही सकारात्मक ढंग से चीज़ों को अपनाया है और आगे बढ़ा है, तो हमें एक आंतरिक खुशी मिलती है। तो सभी युवा वर्गों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस आंतरिक खुशी को खोजने का प्रयास कीजिए कि किस मार्फत खोज सकते हैं। जैसे, ठीक है, आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, आपके कुछ हॉबीज होंगे, आप उसको कीजिए। यदि कोई गायक है तो गाना गाना चाहिए। रचनात्मक होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए, किसी को घूमना अच्छा लगता है, घूमना चाहिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपको उससे मानसिक शांति मिलती है। हाँ, लेकिन यदि आपके कर्मों से आपके समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचता, देश को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो आप कभी भी मानसिक रूप से ना खुश रहेंगे और ना ही शांति महसूस करेंगे।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ हम जब अपने बारे में सोचते हैं और हमारे भीतर देने की भावना नहीं होती है, तो ऐसे में ऐसा होता है कि सिर्फ समाज का एक वर्ग जो है प्रगति कर रहा है, और वही समाज के अच्छे संचालन के लिए हर एक वर्ग का प्रगति करना बहुत आवश्यक है। तो सिर्फ मैं जीवन में सफल हो रहा हूँ यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। एक समय ऐसा भी आता है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है समाज को देने की। तो आई बिलीव ऐसे दिन तब बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर सामने आते हैं कि हम समाज के प्रति क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर चर्चा कर रहे हैं, साथ मिलकर शांति से जीने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। जो इस महीने की 16 तारीख को मनाया गया। आज के इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपका कोई विचार है।

0: आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रोफेसर जी।
1: जी,
0: हमने परिवार के स्तर पर बात कर ली, युवाओं के स्तर पर बात कर ली, उसके बाद हमारा समाज आता है। समाज में कई वर्ग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, कई संस्कृतियां मिलकर एक साथ रहती है। मॉरिशस और भारत जैसे देशों की बात करें तो एक ऐसा देश है जहां पर सब रंग एक साथ मिलकर एक इंद्रधनुष का कार्य करते
1: जी,
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में आजकल हम देखते हैं कि कभी कभार छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, अनबन हो जाती है और लोगों में दूरियाँ आ जाती है, और ये समाज के प्रगति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब समाज प्रगति नहीं करेगा तो देश की प्रगति संभव नहीं है। तो किस तरह से छोटे छोटे मनमुटावों को हम दूर रख कर जो है समाज में भी ये एकता और प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रख सकते हैं?
1: जी देखिए, पूरे विश्व में देखेंगे कि कोई भी देश हो, वहाँ विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लगभग 1900 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसका कई भाषाएं तो ऐसी भी हैं कि जिसका कोई साहित्य नहीं है
0: जी।
1: तो इस संबंध में बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए कि समाज में समानता, भ्रातृत्व प्रेम की बात हमेशा होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें सहिष्णु होना चाहिए। हम यदि समझदार नहीं हैं तो कहीं ना कहीं समाज में समस्या पैदा हो सकती है
0: जी।
1: देखिए, इसी हम जब बात करते हैं, हमारे पास एक मुख है, एक मुंह है, उसी मुंह से हम अच्छे वचन भी बोल सकते हैं और बुरे वचन भी बोल सकते हैं। हमारे पास दो विकल्प है, किसी का हम दिल दुखा भी सकते हैं और किसी के दिल को हम जोड़ भी सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास खट्टे फल खाने का भी विकल्प है और मीठे फल भी खाने का विकल्प है, तो यह हमें चुनाव करना है कि हम मीठा फल खाएं या खट्टा या कड़वा फल खाएं
0: जी।
1: तो हम क्यों कड़वा बोलें जबकि हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है? आप इतने समझदार हैं, आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, तो समाज में संवाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यानी हमें सबके साथ अच्छे से संवाद करना चाहिए, यानी यदि समाज के बीच बातचीत ही खत्म हो जाए तो इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और मनमुटाव पैदा होता है। हमेशा याद रखिए कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, और जब हम इस बड़े सिद्धांत पर बात करते हैं कि सभी लोगों का, प्रकृति का, यानी सभी वस्तुओं का निर्माण ईश्वर ने किया है और हम ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्थावान हैं, तो क्या ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के साथ या व्यक्तियों के साथ या जीव जंतुओं के साथ हम यदि मतभेद रखते हैं, मनमुटाव करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो क्या उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ईश्वर ने हमें बनाया है मिलजुल कर रहने के लिए, आपसी सद्भाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। क्यों हम कहते हैं सभ्यता? सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सभ्य बनने की है, हम कितना सभ्य बन सकें। क्योंकि हम कभी जंगल में रहते थे और जंगल से जब हमारा शहरीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें इसी बात पर बल दिया गया कि हम कितना ज़्यादा अन्य लोगों का ख्याल रख सकते हैं। यदि हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से समाज में आपसी मतभेद खत्म होंगे, स्वार्थ की जो भावना है वह भी समाप्त होगी और समाज में प्रकृति का जो है एक माहौल बनेगा और सभी जगह प्रगति और खुशहाली आएगी। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं लोगों के साथ यदि मनमुटाव है तो क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए,
0: कम्युनिकेशन।
1: हाँ, कम्युनिकेशन। ऐसा संसार में देखिए क्या होता है, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम उनके पास कितना ज्यादा हैं और कितना बेहतर ढंग से हम उन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए बुरा है वह किसी न किसी के लिए अच्छा भी होगा।

0: ऐसा हमेशा हमें सोचना चाहिए। यानी सभी लोग अच्छे होते हैं, हम उनके साथ बातचीत करें, संवाद करें, आपसी मतभेदों को सुलझाएं और समाज में शांति का मार्ग प्रशस्त करें।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी। चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: चलिए एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से शांति से एक साथ मिलकर हम रह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस दिन को मनाया जाता है तो अपने आप में शांति से रहने का एक बहुत ही बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। फिर चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो या फिर विश्व के स्तर पर हो, काफ़ी पहलुओं पर हम ऑलरेडी प्रोग्राम के पहले हिस्से में चर्चा कर चुके हैं। प्रोफेसर जी, आजकल हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी अशांति फैली हुई है
1: जी,
0: है ना। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कमेंट्स के जरिए
1: जी, बिल्कुल।
0: और ये भी कहीं ना कहीं एक अशांति का जो है रूप ले लेता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से मतभेद है, विचारों का मतभेद है, या फिर कमेंट्स के जरिए एक दूसरे को बुलिंग कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जो भी हम कहें, ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है फिर भी इस तरह से लड़ पड़ते हैं। तो कहाँ पर समाज में किस चीज़ की कमी है जो हमें ऐसी चीज़ें भी आजकल देखने को मिलती हैं
1: जी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रश्न का उत्तर खोजना कई बार बहुत ही कठिन है। और कैसे किसी भी व्यक्ति को, केवल युवा वर्ग ही नहीं, बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग सभी लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया के गिरफ्त में आ चुके हैं। जब लगता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में बहुत अकेलापन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वह सोशल मीडिया की तरफ अग्रसर होता है। एक समय था कि जब लोग अपनी भावनाओं को डायरी में लिखकर रखते थे और किसी को पढ़ने नहीं देते थे
0: जी,
1: ठीक है। अब वह जो डायरी है वह फेसबुक है। अब वो ऐसा फेसबुक है यानी मेरे फेस का वो बुक है, कोई भी पढ़ सकता है
0: जी।
1: कोई भी परेशानी होती है तुरंत हम सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर देते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं तो फोटो डाल देते हैं
0: जी।
1: या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो हम सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कई रूप हो सकते हैं, अलग अलग जो हैं ऐप हैं जिसके मार्फत से हम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड, कहने के लिए लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट में हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं,
0: पर वाकई में
1: लेकिन
0: कितने फ्रेंड हैं?
1: लेकिन यदि आप उनसे बात करना चाहें या अपनी कोई परेशानी साझा करना चाहें या किसी तरह की सहायता प्राप्त करना चाहें तो वो चीजें
0: लोग सामने आते हैं। एक बड़ा सवाल,
1: एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं लोग, पड़ोसी हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं लेकिन हम उनको व्हाट्सएप पर या इस तरह की किसी भी ऐप के थ्रू जो है हम उनसे संपर्क करते हैं लेकिन वो भावनाएं नहीं होती। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत जीवन में हमें फेस टू फेस लोगों से जो है संवाद करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जितना हम सोशल मीडिया के गिरफ्त में आएंगे उतना ही हम अकेलापन फील करेंगे और कहीं न कहीं हम एक मोबाइल फोन जो है एक जेल की तरह है, एक कारावास है। आप मोबाइल के स्क्रीन में कहीं न कहीं अपने आप को कैद करते हैं। जैसे ही आप फ्री हैं, आप एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए आप मोबाइल फोन में कैद हो जाते हैं और फिर उस दुनिया में आप शांति की खोज करते हैं जो कि असंभव है
0: जी। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया अशांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है,
1: बहुत बड़ा कारण।
0: अगर हम इसे एक अलग रूप से देखें, आज तो हमारा विषय अलग है लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया में बुलिंग के चलते काफी मानसिक तौर पर जो है परेशानी से गुजरते हैं, खासकर हमारे युवा जो है इससे काफी पीड़ित होते हैं क्योंकि कभी कभार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें वो शेयर करते हैं जो फिर उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगती है।
1: देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी का सड़क पर कोई दुर्घटना घट गई हो, हम वीडियो बनाने लगते हैं, हमको वहाँ पर उनकी सहायता करनी है, ना कि हम उनका वीडियो बनाकर कहीं सोशल मीडिया पर हम अपलोड कर रहे हैं और उस पर लाइक या अनलाइक जो भी कर रहे हैं।

0: इसके अलावा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष यह है कि हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जो नकारात्मक बातें हैं वह यह हैं कि इस पर अफवाह फैलती हैं, कई बार हमें गलत जानकारियां हम साझा कर देते हैं और कई बार समाज के प्रति हमारा नज़रिया बहुत ही बदल जाता है। हम एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं हम द्वेष, घृणा, इस तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे जो समझदार लोग हैं उनको तो बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो युवा मस्तिष्क है वह कभी कभी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार वे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में जा सकते हैं या इस तरह की समस्या हो सकती है, वो अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। तो हमें सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और समाज में एकरूपता, समानता, न्याय सभी चीज़ों को स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं हमें आसपास के लोगों से संवाद करना है, मिलना है, जुलना है, उनसे बातें करनी है और सभी गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करके हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे समाज में और देश में शांति की बात हो सके और एक कल्याणकारी देश बन सके।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की हम बात करें, जैसे आपने कहा, उसका नकारात्मक पहलू भी है और सकारात्मक रूप भी है। वो निर्भर हर व्यक्ति पे करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप उससे जो है सकारात्मक चीजें ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात पर खास ध्यान देना होता है कि वो हमारे जीवन में शांति लाए या फिर लोगों से हमारा जुड़ने का एक माध्यम बने, न कि हमारे जीवन में और तनाव को बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। काफ़ी सारे पहलुओं पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्र स्तर पर यदि हम बात करें तो देश के नागरिक किस तरह से आपसी संबंध ऐसे बना सकते हैं कि इस शांति की भावना, भाईचारे की भावना या अपनेपन की भावना को और भी जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपसी मतभेद छोटी छोटी बातों पर बढ़ जाता है। किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा या फिर न कहने पर भी, मतलब एक दूसरे से जब हम बात नहीं करते हैं थोड़े समय के लिए तो सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं बात करनी है या मैं क्यों जाऊँ पहले पहल करने, वो क्यों नहीं आ रहा है, है ना? जहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन हमारे मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है।
0: जी, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अधिकांश जो देश है, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो या अन्य भी जो देश हैं, वो लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास एक संविधान का भी निर्माण होता है। और संविधान जो है समाज में या देश में एक ऐसी व्यवस्था देता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण ढंग से और शांति के साथ रह सकें, इसीलिए बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता ना फैले, लोग एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं और आपसी भाईचारा के साथ रह सकें। तो एक संविधान का भी उसमें निर्माण होता है। तो पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम किसी राष्ट्र को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मॉरिशस एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, बहुसांस्कृतिक है और मॉरिशस पूरे विश्व के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही शांति के साथ, भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जितने भी पर्व त्यौहार हम मनाते हैं वो हम सामूहिक रूप से मनाते हैं और जब हम पर्व त्यौहार में सामूहिक रूप से शामिल होते हैं तो सामूहिकता का जो भाव होता है वह भाईचारे के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो यह मॉरिशस देश की अपनी खूबसूरती है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए कि यहाँ विविधता में एकता है, मिलीजुली संस्कृति होने के बावजूद जो है एक सांस्कृतिक मजबूती दिखती है, एक सभ्य और सांस्कृतिक समाज का एक रूप दिखता है और यह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श देश है।
1: जी, और अपने आप में हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जिस तरह वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निभाता है उसी

0: प्रकार समाज के प्रति और देश के प्रति भी जो है उसका एक कर्तव्य होता है, क्योंकि कई बार अगर कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा होता है या सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम दोष सरकार को देते हैं, संस्थाओं को देते हैं। लेकिन संस्थाओं और जो है सरकार का जितना बड़ा योगदान होता है देश की प्रगति में, वही व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का भी अपना योगदान होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जो भी बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है
0: जी।
1: क्योंकि हम ही उनको चुनकर भेजते हैं
0: जी।
1: सरकार कोई अलग से संस्था नहीं है, बल्कि वह हमारा जो है एक मुखिया है, एक प्रमुख संस्था है जो हम लोगों की देखभाल करने के लिए बनती है और हम ही बनाते हैं
0: जी।
1: तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि हम यह मानकर चलें कि सरकार कोई एक अलग ढंग से काम करने वाली कोई संस्था नहीं है, बल्कि उसमें हम शामिल हैं और हमें सरकार के साथ सहयोग देकर आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह। दूसरी बात जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, क्या केवल व्यक्तिगत। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत हम होते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो भूमिका होती है वह सामूहिक भूमिका होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, हम बहुत अच्छे पद पर पहुँचे, या हम किसी अन्य मार्फत से इस समाज में रह रहे हैं, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने देश के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे। यानी अंतिम लक्ष्य जो है अपने देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी रूप में, जब हम एक खिलाड़ी होते हैं तो हम देश का मान बढ़ाते हैं, जब हम एक कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उसमें भी हम देश का मान बढ़ाते हैं। यानी कोई भी पद न छोटा होता है न बड़ा होता है, लेकिन हमारी भूमिका अलग अलग रूपों से होती हुई गुजरती है और कहीं न कहीं हम देश के निर्माण और उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए जितने भी युवा वर्ग हैं या जो भी व्यक्ति हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध है कि हमारा उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने समाज और देश के बारे में नहीं सोचेंगे।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और हर एक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का योगदान जो है मायने रखता है। ये नहीं है कि वो शायद सफाई का कार्य कर रहा है तो उसका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ पर देश के निर्माण में बड़े बड़े पदों की आवश्यकता होती है, वहीं पर छोटे छोटे कार्यों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए हमें लोग नहीं मिलते हैं, कितनी समस्याएँ होती है। तो हर एक काम अपने आप में महत्वपूर्ण है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो इस दिवस का क्या महत्व है, खासकर यूएन का भी योगदान पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब एक ऐसे दिन को मना रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो होगा ही
1: जी। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है
0: जी।
1: उसके बाद इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य हो गया कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है
0: जी।
1: और आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं न कहीं सीमाई जो है मतभेद है, कई देश आपस में लड़ रहे हैं और आर्थिक मतभेद भी चल रहे हैं। जो विश्व में बहुत ही सीमित संसाधन हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उनके लिए भी कई बार मतभेद पैदा होते हैं, और हमारा पूरा विश्व जो है आज कहीं ना कहीं इस संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है, जहां लगता है कि पूरी विश्व की सभ्यता और मानवता किसी बड़े संकट से गुजर रही है। इसका बहुत ही अच्छा समाधान है जो भारतीय परंपरा में है, जो हमारी संस्कृति का मूल है, वह है वसुधैव कुटुंबकम।

0: यानी इस वसुधा में रहने वाले सभी लोग हमारा क्या है, परिवार का हिस्सा है
1: जी।
0: परिवार है। और उस परिवार में क्या है, आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह सबसे बड़ी चुनौती है देखेंगे जलवायु परिवर्तन है, खान पान है, रहन सहन है, आर्थिक चुनौतियां हैं और इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने जो हैं उपलब्ध हैं। और उन सभी का निदान यदि है तो वसुधैव कुटुम्बकम में है। केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, इस वसुधा के बारे में भी सोचना है। यानी यहाँ पर जितना जल है, जितना संसाधन है, उन सभी का उपयोग हमें सोच समझ कर करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक ऐसी पृथ्वी उनके उनके हाथ में सौंपनी है जिस पर वे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना अच्छा जो है संसाधन छोड़ कर रखा है। हम पृथ्वी का दोहन ना करें और उसको उस तरह से क्षति ना पहुंचाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही दुखदाई हो। तो हमारा काम होता है कि हम आने वाली हर पीढ़ियों के लिए एक ऐसे समाज, देश, प्रकृति और का निर्माण करें जिससे कि सभी को यहाँ पर विकसित होने का एक पूरा मौका मिल सके और वे शांति के साथ जी सकें। इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं। आज हमने शांति से साथ मिलकर रहने पर जो है चर्चा की। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर मई महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। जाते जाते प्रोफेसर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको?
0: जी बिल्कुल। इस खास दिवस पर मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि समाज में हमें प्रेम और मानवता की स्थापना करनी चाहिए। यदि हम प्रेम और मानवता की स्थापना करने में असफल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग व्यक्तिगत रूप से असफल होते हैं। यानी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो सामूहिकता में है। हमें समूह के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ किस तरह से हम शांति स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबके सुख को ध्यान में हमें रखना है और हमें आगे के बारे में सोचना है। यदि हम समाज में शांति स्थापित कर पाएंगे, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पाएंगे, तभी हम एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर पाएंगे और तभी हम खुश रह पाएंगे और खुद भी शांत रह पाएंगे। तो जियो और जीने दो।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस टुगेदर पर आज हमने चर्चा की। और इसका कुछ ही शब्दों में अगर कहे तो ये सिर्फ हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम प्रेम से, सम्मान से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश और फिर विश्व स्तर पर एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को चला। जितने श्रोता और दर्शकों ने हमारा साथ दिया आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों को याद दिला दें, इस कार्यक्रम का रिब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर 3 बजे। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही MBC के चैनल 3 पर सपैर के 4 बजे। तो जाते जाते एक बार फिर से प्रोफेसर राजशेखर जी आपका धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। साथ ही हम धन्यवाद देंगे हमारी प्रोडक्शन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का। हमारे प्रोड्यूसर रहे अविनाश बिसुनदयाल जी, आपका धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देंगे फैजान और उरुषा को जिन्होंने हमारा सहयोग दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो ऐसी कामना हम करते हैं। दोबारा आपसे हम मिलने फिर लौटेंगे। नमस्कार आप सभी को।

0: चलिए वीकली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना नमस्कार आपको
1: नमस्कार मनीष माँ सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार वाक्वा के सरू प्लेन में कल सुबह क्या हुआ ये सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं 20 साल के व्यक्ति के शव एक खाली जमीन में मिली पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार वो उस व्यक्ति के घर में चोरी के इरादे से घुसा था जिसने उसका पीछा किया भागने के लिए उसने एक दीवार लांघने की कोशिश की और गिर गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेक कंप्रेशन यानी गले पर दबाव से मौत की पुष्टि हुई है 18 साल के एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है रविवार रात को कंटोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद एक क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा रविवार रात को कंटोरेल में 2 टोलियों के बीच बहस शुरू हुई इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है मामला बहुत जल्द बिगड़ गया गोली की आवाज सुनाई दी 2 वाहनों को आग के हवाले किया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मिविन प्रभाकरन जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे के निधन की दुखद खबर मिली मिविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे 26 साल के थे हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी जो हमेशा मेहनत से काम करते थे हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार मित्रों सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं एमबीसी यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस दुखद घटना की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों और टिप्पणियों की जानकारी ली है ये बात न तो बुनियादी है और न ही सही और इससे परिवार तथा सहयोगियों को ज्यादा खेद पहुंच रही है जनता से अनुरोध है कि शोकग्रस्त परिवार की गरिमा का सम्मान करें एमबीसी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धमकी उत्पीड़न डराने धमकाने वाली वारदात या अनुचित व्यवहार के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती हैं और इन मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाएं लागू हैं इस कठिन समय में संस्था की तत्काल प्राथमिकता सगे संबंधियों और प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग देना है एमबीसी सभी से करुणा संयम और सम्मान बनाए रखने की अपील करती है विदेशी खबरों में कंगो गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक वृहद अभियान का आरंभ हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है उगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio. Man.

0: आपके सितारे।
1: और जी हाँ दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट परी। सुन रहे हैं आपके सितारे प्रोग्राम राइट हियर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। आज की महफिल डेडिकेटेड है एक ऐसी आवाज को जिन्होंने 90s के हर दिल को मेलेडी से भर दिया। एक आवाज जो कभी प्यार बनी, कभी दुआ बनी और कभी भक्ति का रूप। द वन एंड ओनली वॉइस ऑफ अनुराधा पौडवाल जी। कहते हैं कि उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। तो आज के दो जो घंटे हैं वो होने वाले हैं मेमोरीज और इमोशंस के नाम। इस खूबसूरत कारवां को हम आपके साथ बिता रहे हैं और अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 पर। अनुराधा जी, उनकी वॉइस में एक सॉफ्टनेस है और एक चार्म भी, और हर मूड को एक स्पेशल एहसास देती है। और अगला गाना ऐसा जिसने काउंटलेस हार्ट्स को रोमांटिक बना दिया। तो चलिए ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ अनुराधा पौडवाल।

So, आज अनुराधा पौडवाल जी के गाए हुए कुछ सोलो सॉन्ग्स, कुछ डुएट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं. उनकी आवाज़, जहां पर उनकी आवाज़ सजी बॉलीवुड के बहुत सारे और सिंगर्स के साथ, बीट एसपी बाला सुब्रमण्यम, बीत अमित कुमार, नुसरत फतेह अली खान, उदित नारायण, कुमार सानू, द लिस्ट इज काउंटलेस. और उन्हीं गानों को आज आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, द वन एंड ओनली अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने बॉलीवुड के कुछ बहुत ही मेमोरेबल ट्रैक्स हमें दिए. सो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं को हमारे इस प्रोग्राम आपके सितारे में. परी का साथ है और रेडियो मनोरंजन शाम के 6 बजे तक.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: And well, ladies and gentlemen, heart-touching melodies आपके लिए हम लेकर आए हैं. 90s का era वैसे भी melodies का golden era माना जाता था और उस दौर में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज हर cassette collection का important हिस्सा होती थी. और ये भी जो गाना है उनके सबसे iconic romantic tracks में से एक है. फिल्म में थी बागी और बागी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम अमित कुमार की आवाज उनका साथ देती हुई अनुराधा पौडवाल, the one and only अनुराधा पौडवाल. सिंप्लिसिटी से लेकर कह सकते हैं दैट हर एक जो चार्म था उनका वो गानों में फील होता था. जैसे उनकी आवाज़ इतनी सिंपल थी, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना सिंपल था, लेकिन आवाज़ ऐसी, फीलिंग ऐसी जो सीधा दिल के कोने तक पहुंच जाती थी. सभी के लिए ये प्यारा सा गाना उनके सभी फैंस के नाम लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे. मैं हूँ परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन शाम के ठीक 6 बजे तक.

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, 4:40 हो रहे हैं ट्यूसडे आफ्टरनून और लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक अनुराधा पौडवाल जी। तो जी हाँ दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। अनुराधा पौडवाल जी ने प्लेबैक सिंगिंग के साथ

की आवाज सीधा दिल तक पहुंच जाती है सो उनके सभी फैंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे डियर लिसनर्स थैंक यू सो मच सरिता जी काटरबोन से हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं दैट अनुराधा पौडवाल जी इज अ वर्सटाइल सिंगर उनका कोई भी गाना एक स्वीट सा गाना हमारे नाम चलिए सो सरिता जी साथ दे रही हैं आप सो अगला गाना होगा आपके नाम गोज आउट फॉर विश्वन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन तो बस आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का कर रही हूँ मैं इंतजार 5250602005250620200 ये है रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपके सितारे और आज जिस सितारे को हम आसमान से उतार कर आपके दिलों तक लेकर आए हैं वो है द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ अनुराधा पौडवाल लिस्ट तो काफी लंबी है कौन सा गाना सुने कौन सा ना सुने बट कोशिश यही है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ अनुराधा पौडवाल आपके लिए हम लेकर आए उनके सोलो सॉन्ग्स हो या फिर डुएट्स या फिर डिवोशनल सॉन्ग्स हर गाना लाजवाब क्योंकि आवाज ही कुछ ऐसी है जिसमें है सादगी और वो जो सादगी है वो सीधा दिल तक पहुंच जाती है सभी के लिए ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: और जी हाँ दोस्तों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल जी के गाए हुए कुछ सोलो कुछ डुएट्स आज हमारे इस शो में गूंज रहे हैं एंड एक्सक्लूसिवली ये स्पेशल शो हमारे सभी सुनने वालों के नाम साथ दे रहे हैं आप आरएम3 रेडियो मनोरंजन फॉर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव अभी के लिए विजया जी हमारा साथ दे रहे हैं आप भी और एंजॉइंग द सॉन्ग्स तो चलिए चल पड़ा ये गाना आपके नाम एक और खूबसूरत सा गाना फिल्म चोर और चांद अनुराधा पौडवाल उनका साथ देते हुए एसपी बालासुब्रमण्यम और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर लेकिन खूबसूरत गानों का ये कारवां यहाँ पर जारी रहेगा शाम के ठीक 6 बजे तक लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे मैं हूँ परी आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो मनोरंजन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपके दिल का हाल 5250 6200 5250 6200 पर

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Time check, शाम के ठीक 5 बजे हैं. तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सितारे प्रोग्राम. 5 बज चुके हैं और वक्त वो है जहाँ पर आपका भी काम ख़त्म हो चला है. मे बी इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या ऑलरेडी घर पहुँच चुके हैं. जहाँ कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए आज के हमारे सितारे, वन एंड ओनली अनुराधा पौडवाल.

0: आपके सितारे।
1: सो वेल फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का। 7:05 हो रहे हैं और आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज की हमारी ये शाम होने वाली है बेहद खास, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसी आवाज को जिसने मोहब्बत को सुर दिए, भक्ति को एहसास दिया और हर दिल में अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आज का ये पूरा सफ़र हम डेडिकेट कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर अनुराधा पौडवाल जी को। रोमांटिक हिट्स हो या फिर सोलफुल मेलोडीज या फिर भजन, उनकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी आवाज़ को हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर। यह है प्रोग्राम आपके सितारे। मैं हूं परी आपके साथ शाम के ठीक 6 बजे तक। अभी के लिए यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गोविंद रघुनंदन फ्रॉम वाकवा। सो आपका भी स्वागत करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, और साथ ही आपकी ब्यूटीफुल वाइफ वेदा, सभी रघुनंदन परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम, इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अनुराधा पौडवाल।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और जी हाँ, यहाँ पर लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल के कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। जन्म में उनका नाम हुआ करता था अलका नदकर्णी, और उनका जन्म हुआ एक आइकॉनिक इंडियन प्लेबैक एंड डिवोशनल सिंगिंग परिवार में। उनकी करियर की शुरुआत हुई साल 1973 में, और उसके बाद 1990s में उन्होंने रूल किया बॉलीवुड को, जहां पर कुछ बहुत ही लाजवाब गाने उन्होंने गाए। उन्हें नवाजा गया पद्मश्री के साथ इन द ईयर 2017, जहां पर उनका मैसिव कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री इसे सराहा गया। और चलिए, अनुराधा पौडवाल जी की बातें हम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और उनके गाए हुए कुछ पॉपुलर गीत आपके नाम लेकर आए हैं। सो एक और प्यारा सा गाना, दिल है कि मानता नहीं, एक खूबसूरत सा गीत पिक्चराइज हुआ ऑन पूजा भट्ट और उनका साथ देते हुए इन द मूवी आमिर खान। अनुराधा पौडवाल, बाबला मेहता की आवाजें। एंजॉय दिस वन।

और जी हां दोस्तों ये वो गाना है जो आजकल काफी पॉपुलर चल रहा है धुरंधर फिल्म में हमने इसका रीमिक्स सुना लेकिन दिस वाज द ओजी द ओरिजिनल वन दिल फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज़ें

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करी हमने अनुराधा पौडवाल जी और उनके गाए हुए गानों की। तो बॉलीवुड में उनकी जो एंट्री है वो किसी बड़े गाने से नहीं बल्कि एक श्लोक से हुई, जो फिल्म अभिमान में हमने सुना 1973। एक संस्कृत श्लोक का गाकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन लीड रोल्स में नजर आए थे। बिना फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग से बनी है लेजेंड। जी हाँ, 9000 से ज़्यादा सॉन्ग्स और 1500 प्लस भजन रिकॉर्ड करने वाली अनुराधा जी ने कभी फॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली। वो लता मंगेशकर जी को ध्यान से सुना करती थी और उन्हीं को सुनकर अपना रियाज करती थी और कहती हैं कि वही बनी उनकी सबसे बड़ी लर्निंग। मोनोपोली तोड़कर बनाई अपनी पहचान 90s के दौरान, जब प्लेबैक सिंगिंग में कुछ ही आवाजें राज किया करती थी, तब अनुराधा जी ने अपनी अलग जगह बनाई। उन्होंने लगातार 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की। आशिकी 1990, दिल है कि मानता नहीं 1991, बेटा 1992, इन फिल्मों के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। और आज इसी लाजवाब सिंगर को हमने सेलिब्रेट किया उनके कुछ पॉपुलर गीत आपको सुनाकर। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत के साथ इट्स टाइम कि मैं आपसे लूँ अलविदा, यानी कि परी तो चली लेकिन मुलाकात होगी आपसे जल्द ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। जाते जाते यहाँ पर विजया जी कहती है कि ओरिजिनल गाने को तो कम्प्लीटली भूल गई, धुरंधर में जो रिमिक्स सुना था वो अभी भी दिमाग में घूम रहा है। एंड एक्चुअली यू आर राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतने प्यार से हमारे साथ जितने भी लिसनर्स जुड़े, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। परी साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी आपसे जल्द, ठीक 6 बजे सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। तब तक के लिए जुड़े रहें RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खासतौर पर चर्चा में। विपक्ष के सांसद अदगन जुवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मस सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा। लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना, ये बात कही प्रधानमंत्री ने। वे प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। वाकवा के स्वरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ?

0: ये सवाल सभी की जुबान पर 20 साल के व्यक्ति के शव को एक खाली जमीन में पाया गया। 18 साल के छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। विदेश में एबोला महामारी कोंगो में कहर बरपा रहा है, 131 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से पेश हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खास तौर पर चर्चा में रहा। विपक्ष के सांसद अदगी अजवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मास सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे एक गंभीर और अस्वीकार्य विचलन बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में एक आपराधिक जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, जबकि आगे और गिरफ्तारियां बाकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के उपकरणों के उपयोग को संविधान के अनुरूप रखने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचों को मजबूत किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: B709
2: टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्शन से जुड़े अदगी अजवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी या फोन टैपिंग मॉरिशस के संविधान तथा उसमें निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पूर्व सरकार के दौरान लागू की गई निगरानी प्रणाली का भी उल्लेख किया। पिछली सरकार ने सार्वजनिक धन के भारी खर्च पर एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की थी, जिसका मकसद हर मॉरिशियन नागरिक की अंधाधुंध जासूसी करना था। वे सभी की निगरानी कर रहे थे। मैडम स्पीकर, आपकी, मेरी, विपक्ष नेता की, पूर्व प्रधानमंत्री की, इस सदन के हर सदस्य की, यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों की भी। स्वयं माननीय सदस्य, उनके पिता जो उस समय मंत्री थे, और उनके परिवार भी इससे अछूते नहीं थे। और केवल इतना ही नहीं, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, राजनयिक समुदाय और हर परिवार के निजी डेटा को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष सदन में कहा था, मेरे निर्देश पर इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, निष्क्रिय बना दिया और इसे पूरी तरह अनुपयोगी कर दिया गया। मैं सदन को सूचित कर सकता हूं कि इस मामले में फिलहाल एक आपराधिक जांच चल रही है। मुझे जानकारी दी गई है कि कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के वास्ते सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि मॉरिशस गणराज्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। सदन को जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और उससे संबंधित विधायी प्रावधानों की समीक्षा और बहस करने का अवसर मिलेगा। ये प्रावधान हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे व्यापक और गहरे बदलाव लाएंगे। ये कानून निगरानी के मुद्दे को केवल आपराधिक जांच के दायरे में संबोधित करेगा। इसका उद्देश्य इन साधनों के उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक और वैध हित में सीमित करना होगा, न कि किसी विशेष शासन के व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए। इन्हें एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी आधार पर रखा जाएगा। वर्तमान में उन आवश्यक स्वतंत्र संस्थागत संरचनाओं पर गंभीर विचार किया जा रहा है, जो इन उपकरणों के उचित और संतुलित उपयोग की गारंटी देंगे। इन्हें एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में शामिल किया जाएगा। हमें कभी भी पिछली सरकार के उस आपराधिक दुरुपयोग की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए, जिसने पूरे देश में गहरा और जायज आक्रोश पैदा किया था।
1: My question is to the Honorable Prime Minister, given that the states still have the capacity to intercept, it is still within the state apparatus, with all the risk of political abuse and misuse, why does he not consider it urgent and necessary to come with an oversight and accountable mechanism like is being done overseas in Commonwealth countries.

0: I did say, Madam Speaker, the Honourable Member is wrong. There is no system at the moment. There is none. I explained. I just said that the system was dismantled, shut down and rendered inoperable. So there is none at the moment. But what I said in my answer, that we will have to come with new legislation for the purpose of the matter that I mentioned, like terrorism, drugs and all those things, criminal offences.
1: लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सरकारी नेता ने स्पष्ट किया कि LGSC एक स्वतंत्र सार्वजनिक संस्था है और इसके प्रशासनिक मामलों या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: I've given notice of the following private notice question.
3: विपक्ष नेता जोले जागा का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन 2026 में LGSC की ओर से जनरल वर्कर्स और कूड़ा उठाने वालों की भर्ती से संबंधित। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के अंतर्गत ये आयोग स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह पर 15 जून 2025 को 1463 कर्मचारियों का कंट्रैक्ट समाप्त किया गया। इसके बाद इनमें से कुछ लोग मामले को अदालत में ले गए। 2024 के आम चुनावों से एक दिन पूर्व रिक्रूटमेंट्स किए गए थे और तब के चेयरमैन के साथ संभावित गलत कार्य के सिलसिले में जांच की जा रही है। विपक्ष नेता LGSC के पुराने चेयरपर्सन भानुदत्त बिहारी के मोडस ऑपरेंडी पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने LGSC को एक वन मैन कमीशन में तब्दील किया। पिछले 25 जनवरी को सुनाए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन कर्मचारियों की भर्ती कानूनी रूप से इनवैलिड थी और कि LGSC को उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार था। 2026 की शुरुआत में LGSC की नई प्रशासनिक परिषद की तरफ से रिक्रूटमेंट की एक नई कार्रवाई चलाई गई। इस तरह प्रधानमंत्री ने संबंधित दस्तावेजें पेश की कि कितने कर्मचारियों को गार्बेज कलेक्टर और जनरल वर्कर की तरह रिक्रूट किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण दिया कि भर्ती किए जाने वाले नए लोगों को 2 महीने की अवधि का एक सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन किसी पिछले सजा से एक नामजदगी में रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। 2012 से इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट में सुधार लाया गया ताकि इस सिलसिले में कोई भेदभाव न हो जब किसी ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा हो या प्रमोशन हो रहा है जो किसी अन्य अपराध के लिए सजा काट चुका हो और अपना कार्य करने से संबंधित नहीं है वर्तमान में। हाल ही में एक नए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बिल पारित किया गया, जिसका मकसद है एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में कुछ प्रकार के पिछले सजा को शामिल न करना ताकि ऐसे प्रकार के लोगों के पुनर्वास में दिक्कत न हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि LGSC के पूर्व अध्यक्ष DRSM के खिलाफ भेदभाव का कोई भी आरोप नहीं है। विपक्ष नेता के अतिरिक्त प्रश्न में वे समझाना चाह रहे थे कि किस कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया।
0: I can tell the honorable leader of the opposition, any public officer has a duty to report any interference or any suspected act of corruption. He hasn't done so, so there was none.
4: Whether there has been discrimination on ethnic grounds in the recruitment process against one specific community.
0: I'm not aware of that, Madam Speaker. There were lots of allegations in the public. I think he quoted an article from the Express, but there was no inquiry, there was no discrimination found. Because there was no inquiry, there was no complaint by the person himself.
3: दूसरी तरफ विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि हालिया रिक्रूटमेंट कार्रवाई में किसी तरह का झुकाव हुआ है या नहीं। एक अन्य प्रश्न पूछा गया कि क्या पोर्टलिस नगर पालिका में भर्ती किए गए 123 लोगों में 50% चुनाव क्षेत्र नंबर 2 से हैं? उत्तर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे रिक्रूटमेंट में हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरी ओर स्पीकर ने इस पर अपना रूलिंग रिजर्व किया कि विपक्ष नेता LGSC की तरफ से रिक्रूट किए गए लोगों के नाम पेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे।
5: It's a very sensitive

0: issue, I'm going to keep my ruling and take time to consider.
1: प्रधानमंत्री ने LGSC के नए अध्यक्ष के नॉमिनेशन का भी जिक्र किया.
2: राष्ट्रीय सभा में आज पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया गया. इसका मकसद है एक विशेष आयोग की स्थापना करना, जिससे संविधान को लेकर कुछ नियमों में बदलाव लाए जा सके. इस पर ज्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे.
1: मॉरिशस में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा एक वृहद संवैधानिक सुधार की योजना का प्रावधान है. इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का गठन किया जाएगा, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. ये आयोग प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने का काम करेगा. पीस, जस्टिस एंड लिबर्टी, न्याय, शांति और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया जाएगा. सीनियर काउंसलर रमा वलाइडन ने कहा, अगर शांति होगी तो न्याय होगा, न्याय होगा तभी तो स्वतंत्रता होगी. न्याय सबका केंद्र है, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, विकलांग हो, सभी के लिए न्याय, प्रकृति के प्रति भी न्याय चाहिए. इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे. प्रकृति, नेचर के अधिकारों की मान्यता, पर्यावरण, टेक्निक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े नए अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी. प्रकृति अधिकार भी है, जैसे कि वाकाशु, कानूनी कार्रवाई चलाने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार होगा. सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो या आम व्यक्ति, उनका कर्तव्य होगा प्रकृति के संरक्षण और इसे सुनिश्चित करने का अधिकार. सरकार का उद्देश्य संवैधानिक ढांचे को आधुनिक बनाना है, ताकि संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके. सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी और राइट टू रिकॉल लागू किया जाएगा. जनता एक याचिका पर हस्ताक्षर कर सकती है और मांग कर सकती है कि ये लोग अपना पद लौटाएं, नॉमिनेशन रिकॉल करें. इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं. इससे मॉरिशस जैसे छोटे देश को मदद मिलेगी, ताकि मंत्री हो, सांसद हो, अपने वचनों का पालन करें. अन्य सुधार प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील का गठन, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष संवैधानिक डिवीजन. जब इस तरह का न्यायालय होगा, अगर किसी मामले का विरोध करना है तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए छोटी ही अवधि में ही. आयोग को शक्तियों के बेहतर संतुलन पर भी विचार करना होगा. साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के कानूनी सिद्धांतों को भी संवैधानिक ढांचे में शामिल करना होगा. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पर भारत में काफ़ी प्रगति हुई है. इसकी बदौलत लोग आसानी से केस डाल सकेंगे. कानून में इस बात का प्रावधान कि लोग ज़्यादा आसानी से मामला दर्ज करा सकेंगे. आयोग सार्वजनिक तौर पर पेश हो सकता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे विचार से इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जब पेश हो रही हैं, रेडियो हो, टेलीविजन या अखबार, इसे देख सकेंगे. इससे जनता सीख सकेगी, इससे किसी भी प्रस्ताव के बारे में बेहतर रूप से जान सकेंगे. ये मददगार साबित होगा. इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद से संवैधानिक सुधार के कार्यों की औपचारिक शुरुआत होगी. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस प्रणव सिक्यन करेंगे. उनके साथ कानूनी विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए सुझाव देंगे.
2: आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली. मेविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे. वे 26 साल के थे, हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी, जो हमेशा मेहनत से काम करते थे. हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. और आज तैयारी कल बेहतर प्रतिक्रिया के लिए बंदरगाह में एक ड्रिल आयोजित किया गया जिसमें लगभग 200 लोग

0: लोगों ने भाग लिया। यह अभ्यास एक ऐसे परिदृश्य पर आधारित था जिसमें खतरनाक पदार्थ शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य ये देखना रहा कि किसी वास्तविक घटना की स्थिति में स्थिति कैसी रहेगी और अधिकारी किस तरीके से इसे संभाल पाएंगे। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
1: बंदरगाह के टर्मिनल दो पर दमकल कर्मी घायलों और मृतकों को निकालने में लगे थे। कंटेनर में हुए विस्फोट के बाद समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। कंटेनर के अंदर ऐसे पदार्थ मौजूद थे जो अत्यंत खतरनाक थे। हालांकि ये कोई वास्तविक विस्फोट की घटना नहीं थी बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। लीड कंट्रोलर इंद्रदेव रामसन ने कहा, एक विस्फोट के बाद रासायनिक पदार्थ का रिसाव हुआ है। बंदरगाह में एमपीए ने अपनी आपात सेवा तैनात की है। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण था डिकंटामिनेशन, यानी रासायनिक प्रदूषण हटाने की प्रक्रिया। कंटामिनेशन हॉट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रेस्पोंडर को डिकंटामिनेशन यूनिट से होकर निकलना चाहिए। चूंकि अंदर में कैजुअलिटी थी इसलिए सामु की मदद ली गई। एक बृहद अभ्यास था जिसका उद्देश्य सभी उपकरणों की क्षमता को परखना था। इसमें डिकंटामिनेशन जोन, रासायनिक सुरक्षा और डिटेक्टर शामिल रहे। US एम्बेसी के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ और कमीशन कैलेब गोडर्ड ने कहा, $1,40,000 दान किए गए उपकरणों के तौर पर आज यहाँ सभी परीक्षण के लिए जुटे हैं। एक देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों और आवश्यक सुधारों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया। इस अभियान में विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों से जुड़े लगभग 200 आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया था, क्योंकि बंदरगाह देश का एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थान है। कप्तान बेनुआ बाबू ने कहा, पोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, बंदरगाह सुरक्षा योजना जिसमें अन्य विभाग भी जुड़े हैं। ये एक असल अभ्यास है ये जानने के लिए कि दूसरे साझेदारों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय क्षमता का परीक्षण करना भी था, जिसकी अगुवाई नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा की गई।
0: रविवार रात को कौतूहल में हुई हिंसक वारदातों के बाद गिरफ्तार चार संदिग्धों को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। उन पर पूर्व योजना के साथ हमले का स्थायी आरोप है। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई, उन्हें हिरासत में रखा गया है। इसका कारण वहां के कौतूहल के हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है, जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया, गोली की आवाज़ सुनाई दी, दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। वाकवा के स्वरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल सभी की जुबान पर। 20 साल के व्यक्ति के शव एक खाली जमीन में मिला। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो उस व्यक्ति के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, जिसने उसका पीछा किया। भागने के लिए उसने एक दीवार लांघने की कोशिश की और गिर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेक कंप्रेशन यानी गले पर दबाव से मौत की पुष्टि हुई है। 18 साल के एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अली ह्वायाज के नाम से प्रसिद्ध अली बुलाकी को पुलिस हिरासत में रखा गया है। जमानत पर रिहाई की मांग पर उसे आज दोपहर बाद फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। इस मोशन पर बहस को 27 मई के लिए स्थगित किया गया, क्योंकि गहरी जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने ज्यादा समय मांगा है। शुक्रवार 22 मई को संस्था के जांचकर्ता अपनी जांच पर अदालत को जानकारियां देने वाले हैं। वकील यशवीर सिंह रूपन के इस मामले से हट जाने के बाद अब अली ह्वायाज का प्रतिनिधित्व वकील आइवान कुलेंडावेलू कर रहे हैं। मेजिन कोंडमास्क के 23 साल के निवासी अली ह्वायाज पर सार्वजनिक और पारास्टेटल संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए पैसे लेने का शक है। 114 मिलियन रुपये से भरे लगेज के साथ गिरफ्तार बिजनेसमैन जुजियन दिलावन के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद अली बुलाकी को गिरफ्तार किया गया।

विदेश की खबर में कोंगो गणराज्य में बुला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं। एक वृहद कार्रवाई शुरू की गई है जिसके तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के दो मामलों का पता चला है।

चले जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, सेंट्रल प्लेटों पर ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान भी बादल घिर रहेंगे और बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज रात के लिए दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 19 से 21, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 26, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:33 पर, शाम को सूर्यास्त 5:40 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV
0: शोक समाचार सुनिए। 85 75 साल की 75 years old की श्रीमती वमला देवी अपाडू। श्रीमती वमला देवी अपाडू पैदाशी नाम वेंकाया और जो वमला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान रेजिडेंस खामदनी बासें कातोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। रॉ रोड ब्रामस्टान में 49 साल के 49 years old के श्री विशाल गुलवा जो विशाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी नीरू नंदराम गुलवा के मकान रॉ रोड ब्रामस्टान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिश्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। अवेन्यू बुगैनविलिए तमारे में 71 साल के 71 years old के श्री लाल देव जगन्नाथ जो पौतनिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले मोसलमा वी और एस कस्कावेल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थे गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के मकान एवेन्यू बुगैनविलिए तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

सीबी की तरफ से विज्ञप्तियां सीबी महतबा के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी शमय गोनिया के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 21 मई को दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: नहीं सो।
1: शाम के 6:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और आज मंगलवार 19 मई 2026 और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन ऑरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। और इस कार्यक्रम को

0: Nisu.
1: सात बजकर 42 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, जिंदगी को गले लगाना सीख लो, क्योंकि हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई कहानी लेकर आता है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है ना, वही सच में जिंदगी जीना समझ पाता है।

नहीं सो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए अक्सर कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि हर नई शुरुआत किसी पुरानी चीज की विदाई होती है। हर खुशी की कीमत होती है और खोना हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना हम ये खूबसूरत कार्यक्रम नई सोच प्रोग्राम, 6:54 हुए हैं और इस गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम पेश करेंगे आपके नाम।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, जी हाँ, और मैं उषा कौर आप लोगों के साथ आरएम फ्री पर रेडियो मनोरंजन पर साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपका जो मैसेजेस हैं आप भेज सकते हैं 5250-6200 और कॉल आप कर सकते हैं 4028070। चलिए, आज का पहला गाना जहाँ हम चलाएंगे 80s और 90s के खूबसूरत गाने, पॉपुलर गाने, और हमें आप लोगों का इंतज़ार

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सात बजकर 19 मिनट हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ, ये खूबसूरत कार्यक्रम, यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे परवीन आज के लिए। वो रहती है क्यूपिप और खास गाना वो मांग रही हैं अपने बेटे अंकुश के नाम और बेटी आयेशा, और साथ ही साथ में हमारी प्यारी अनीता जी जो हमें सुन रही है फिकॉफलाक से। चलिए, आप गाना मांग रहे हैं पति राज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, पोती हिमेशा, आदिया, पोते अंश के लिए। धन्यवाद साथ देने के लिए। चलिए अगला गाना चल पड़ा सोनू निगम की आवाज़ में।

0: Free Radio. Radio. दिलों की आवाज़।
1: 7:36 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। चलिए अगला गाना खास कर हम चलाने जा रहे हैं मोहिनी जी के लिए, जो रहती है वो बासै, और गाना खास कर वो मांग रही है अपने पति राजन के लिए।
0: RM3 Radio.

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: दिलों की आवाज
2: 7:50 हुए हैं और यहाँ पर खूबसूरत गाना हम चलाएंगे गुलशन भोला जी के लिए और वो गाना सुनना चाहते हैं बेकाबू फिल्म से लिया गया खासकर गाना वो डेडिकेट कर रहे हैं मामा प्रभा और बहन दीक्षिता और अयेशा के लिए चलिए और साथ में भोला फैमिली के नाम जाएगा ये प्यारा गाना

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए प्यारे 90s लवर्स, आप लोग सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम दिलों की आवाज़, और यहाँ पर नंबर आपको याद दिला दे 5250600। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं। और यहाँ जो गाना हम चला रहे हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक, कर्तव्य फिल्म से दिया गया, खासकर गिरीश हरलोल के लिए जो हमें सुन रहे हैं, साथ देने के लिए थैंक यू।

शाम के 8 बजकर 11 मिनट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर। और यहाँ पर सुनील है जो हमें सुन रही है। भाई श्रवण के लिए गाना वो मांग रही है, भाभी कीर्ति अभिनव किया नाव्या तिलक परिवार के लिए। चलिए 90s का ये खूबसूरत गीत आपके नाम, और साथ ही साथ में सूरज जी जो रहते हैं त्रियोले उनके नाम भी ये गाना जाएगा। इम्तिहान फिल्म से लिया गया।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: 8:25 हुए हैं जी। हाइक से भरकर एक गीत 80s और 90s के प्यारे तराने यहाँ पर रेहाना जी जो हमें सुन रही है फिनिक्स से, साथ देने के लिए धन्यवाद आपको। और बदवग भी देसी जी जो रहते हैं तायाक, उनके नाम जाएगा ये गाना। और खास गाना वो मांग रहे हैं अनुषा केडन के लिए जो रहती है मोताबा, और साथ में सुदेवी जी जो रहती है वाहकुआ, गाना वो मांग रही है ललिता दीदी कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेंगा के अक्षय, विकास, कृषय, कृषिका, लक्षिका और रामरतन परिवार के नाम।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके
1: आज बजकर 51 मिनट हुए हैं दोस्तों आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद अगला गाना जाएगा रीना के लिए जो हमें सुन रही है क्यों पिप से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच और इस आखिरी गीत के साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला
0: तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे
1: आप अपना ख्याल रखिए मिलते हैं बहुत जल्द उषा की ओर से
0: तुम्हारे यहां
1: से नमस्कार आदाब शुभ रात्रि
0: तुम्हें छू कर आई होगी मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी

आज हम मंगलवार भोजपुरी तड़का प्रस्तुत करे खातिर हम तो एकदम तैयार तो चल ई नंबर वा मिला ला कत सौ दे कत हो वैसा करूँ तो हर पसंदीदा गीतवन के मांग कर जा बेझिझक फटाफट

Sonuol, pas satu AC campur al bahar.

रात के 9:45 हो गल बा श्रोता लोगन कभू सोच ले हवा जा कि अगर रेडियो और फोन नहीं रहता कैसे भोजपुरी तड़का में भाग लेता तो हमनी के हमेशा चाहेला ऐसन ऐसन महान व्यक्ति लोगन के श्रद्धांजलि अर्पित करे के जे लोग ऐसन आविष्कार करलन तो चला रामभाराम तोवर के गावल गीत सुनावा जा सुदेवी जी खातिर जो हमनी के सुनताई बखत वाकवा से

0: भोजपुरी तड़का।
1: तो चलो श्रोता लोग, आज मंगलवार 19 मई 2026, गल पंद्रह मई के पूरा जग में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावल गल। परिवार एगो मनुष्य की जिंदगी में बहुत महत्व रखेला। सुखी परिवार तो सुखी सारा संसार है ना। परिवार खातिर समय नहीं निकालवा तो बाद में पछताए के पढ़ेला। परिवार खातिर ही ते जीवन व्यतीत करल जाला। तो चला अगला गीत मेविन खातिर जो हमने के सुनता कुछ दो से, और खासकर भाई विशाल और एक धवरम पत्नी रीना खातिर, और जितना कोई के बखत काम करता।

रात के 10 बज गल बा छोटा लोग ईगो का हवत बहते हैव इज वेल्थ ये बात तो बिल्कुल सच है स्वास्थ्य अब तो बड़ा कोनो दौलत नहीं बा ये तो सब मानेला तो स्वास्थ्य रहे के चाहेला हर दम व्यायाम करके देखा था वह कितने कोई मॉरिशस में डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से पीड़ित हो जा तो चला ये बात बोला हमने सब स्वास्थ्य तो पूरा समाज स्वास्थ्य और ये गाना भोजपुरी बॉयज के गावल गीत भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज और ये गाना सरस्वती जी खातिर जो नी बखत हमने के सुनाता मेबग से गाना मांगा था वंजा बेटे अंकुश बेटी रिया और पूरे परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: अरे बोल गया इसने सुगा जुगाल वो लाभी

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:16 श्रोता लोग तो लोग जोड़ते वन जा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन संगे हमने के भोजपुरी कलाकार लोगन के शत शत दिल से प्रणाम। वो कला से कितने लोगन के मन बहलावत हवन जा यही एगो सच्चा कलाकार की गुण है। दूसर का के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए के आशा करत हैं कि हम भी कहीं ना कहीं तुहर मन के प्रसन्न करत हैं। चला अगला गीत सुना नुयन के गावल गीत देवरानी जी खातिर। जी हाँ, देवरानी जी खातिर जो हमने के सुनाताई बखत वाकवा से गाना मांगत वन जा रामधानी परिवार के लिए

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:31 हो गए बा श्रोता लोग हमेशा तोहरा चाहेला माने के सब कोई के ईश्वर मौका देवेलन आगे बढ़े के परंतु जे कोई समय के जाए देवेलन जा मौका नहीं पहचान पालन त जिंदगी में देर ही जाला समय सबसे बड़ा बलवान बाते आप समय के भूल जा त समय फिर से नहीं लौट के आई चला अगला गीत सुना गणपत सत्याम ईसन के गावल गीत और ही गाना खासकर इंद्राणी जी खातिर जो हमने के सुनता मेबग से और आश्विन खातिर जो रहेला गौगोब सात देवता तचला

रात के 10:47 हो गल बा श्रोता लोग हमने के मनुष्य सब जीवा जंतु से श्रेष्ठ है सा काहे कि परम पिता परमेश्वर हमने के बुद्धि प्रदान कर ले हवन तो प्यारे संगतिया लोगन अपन दिमाग के सही प्रयोग कर जा जितना जरूरी उतना ही बात कर जा दिल कोई के नए दुखावा जा और क्रोध से बचा जा तब तोरो तोरा लौकी के सचमुच धरती माता एगो स्वर्ग है

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जा

तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या हो।

रात के 10:55 हो गल बा श्रोता लोग आज के भोजपुरी तड़का हैजा समाप्त हो गल तोहर से आशीष से खूबसूरत साथ रहल तोहर और से एकर खातिर हृदय से धन्यवाद करत हैजा चला अपन ध्यान रखिया खुशी से जिया और सबके प्रति प्यार बांट जा नमस्ते और उषा की आज्ञा देवा जा शुभ रात्रि

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर्दी का मौसम है, असर कुछ दिख रहा है, तो आप कुशल मंगल रहें और स्वस्थ रहें। आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। ये है सुनहरे पल कार्यक्रम, ने तो एक बार फिर आपके समक्ष रात्रि के 12 बजे तक। तो आइए बॉलीवुड के सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके नाम करते हैं।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जाने तमन्ना क्या कर डाला,

वैसे जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो 1960s का दौर बॉलीवुड संगीत का एक ऐसा सुनहरा युग था जिसे आज भी लोग गोल्डन एरा कहते हैं। उस दौर के गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी होते थे। हर सुर में एक नमी थी, हर लफ्ज में एक जज्बा था और हर धुन सीधा दिल को छू जाती थी। आज भी जब रफी साहब, लता जी, मुकेश किशोर कुमार, आशा भोसले या मन्ना दे जी की आवाजें रेडियो पर गूंजती हैं, तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। सवाल ये है कि आखिर 60s के बॉलीवुड गाने इतने मेलोडियस और सोलफुल क्यों थे।

सबसे बड़ा कारण था उस दौर के म्यूजिक कंपोजर्स का क्लासिकल म्यूजिक से गहरा रिश्ता। नौशाद, एस डी बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, रोशन, रवि ओपी नैयर, सलील चौधरी जैसे महान संगीतकारों ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को फिल्मी गानों में इतनी खूबसूरती से मिलाया कि हर कंपोजिशन एक कला का नमूना बन गई। राग पर आधारित धुनें, लाइव ऑर्केस्ट्रास, असली इंस्ट्रूमेंट्स और सोलफुल अरेंजमेंट्स गानों को एक रूहानी एहसास देते थे। तब कंप्यूटर बीट्स या ऑटोट्यून नहीं होते थे, इसलिए असली टैलेंट और सुरों की मेहनत ही सब कुछ होती थी।

उस दौर के लिरिसिस्ट्स भी कमाल के थे, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी जैसे शायरों ने गानों को सिर्फ लिरिक्स नहीं बल्कि पोएट्री बना दिया था। हर लफ्ज सोच समझ कर लिखा जाता था। चौधवी का चांद हो, लग जा गले, अजीब दास्तां है ये, बहारों फूल बरसाओ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह आज भी दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बत की सच्चाई और जज्बातों की गहराई महसूस होती है। उस वक्त गाने फास्ट एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी हुआ करते थे।

बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप सुनहरे पर कार्यक्रम सुन रही है। वैसे गायकों की डेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन थी। मोहम्मद रफी साहब हर एक्टर के हिसाब से अपनी आवाज का अंदाज बदल देते थे, जबकि मुकेश की आवाज में दर्द था और किशोर कुमार की आवाज में मस्ती और इमोशंस का अनोखा संगम, और लता जी की आवाज में तो एक पवित्रता और मिठास थी जो सीधे दिल को सुकून देती थी। रिकॉर्डिंग के वक्त सिंगर्स पूरी रिहर्सल करते थे, एक एक सुर को परफेक्ट बनाया जाता था। एक गाने को रिकॉर्ड करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता था।

1960s के फिल्म मेकर्स भी म्यूजिक को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उस जमाने में कहानी और गाने एक दूसरे से जुड़े होते थे। गाने जो थे मूवी का हिस्सा लगते थे, जबरदस्ती डाले गए ट्रैक्स नहीं। रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट मेलोडीज, सैड मोमेंट्स में दिल को छू लेने वाले लिरिक्स और खुशी के सीन्स में खिलता हुआ म्यूजिक होता था। इसलिए ऑडियंस अपने गाने सिर्फ सुनती नहीं थी, उनके साथ जीती थी।

एक और खास बात थी सिंप्लिसिटी और प्योरिटी। उस वक्त जिंदगी थोड़ी धीमी थी, लोग इमोशंस को महसूस करते थे और म्यूजिक में भी वही ठहराव नजर आता था। गाने लाउड नहीं होते थे बल्कि दिल से निकले हुए लगते थे। वायलिन, सितार, फ्लूट, तबला, पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से होता था कि हर कंपोजिशन एक म्यूजिकल पेंटिंग लगती।

आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन 60s के गानों की रूह और सुकून आज भी कहीं अलग ही महसूस होता है। शायद इसलिए क्योंकि उस दौर में म्यूजिक सिर्फ बिजनेस नहीं था, एक इबादत था। हर कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट अपनी ही रूह डाल देता था अपने काम में। इसलिए 60s के बॉलीवुड सॉन्ग्स आज भी अमर हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेलोडीज नहीं बल्कि इमोशंस के खजाने थे। प्रणाम, शुभ रात्रि।